नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फालता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया रद्द करने का साधारण कदम उठाया है। इस विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को नए सिरे से वोट डाले जाएंगे। मतों की गिनती 24 मई को की जाएगी। आयोग ने बताया कि

0: निर्णय 29 अप्रैल को हुए मतदान के दौरान गंभीर चुनावी अपराधों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन की खबरों के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन को जानबूझकर काले टेप से ढक दिया गया था, जिससे मतदान में बाधा आई। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में प्रवेश करते और दूसरों की ओर से वोट डालते हुए पाया गया। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर कल पुनः मतदान हुआ। मगरहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु में कल सुबह 8 बजे से सभी 62 निर्धारित मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती शुरू होगी। मतगणना के लिए कुल 10,545 कर्मियों को तैनात किया जाएगा। इनके सहयोग के लिए 4,624 सूक्ष्म पर्यवेक्षक भी तैनात रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक पर्यवेक्षक सहित कुल 234 मतगणना पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और आयोग के मौजूदा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे तक समाप्त होगी। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी वर्ष 2019 से नीट यूजी परीक्षा का आयोजन कर रही है। एजेंसी ने उम्मीदवारों के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद खत्म करने के मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कल नई दिल्ली में आयोजित शौर्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान सशस्त्र बलों के अतुलनीय शौर्य ने इसे भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्ण अध्याय बना दिया है। भारत ने पिछले साल 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस ऑपरेशन का लक्ष्य पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में स्थित आतंकी ढांचे को निशाना बनाना था। इन हमलों के कारण 4 दिनों तक भीषण झड़पें हुई, जो बाद में 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने की सहमति के साथ समाप्त हुई। रक्षा मंत्री ने कहा कि सशस्त्र बलों ने युद्ध के मैदान में और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की सेवा में साहस का प्रदर्शन किया है। उन्होंने नागरिकों से देश के गुमनाम नायकों की कहानियों और बलिदान को दूर दूर तक साझा करने का भी किया। कार्यक्रम में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और उपरक्षा प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को मजबूत करेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनके योगदान से सभी क्षेत्रों में नवाचार और विकास को गति मिलेगी। श्री मोदी ने उनके नए कार्यकाल के बेहद उपयोगी और प्रभावशाली होने की भी कामना की है। रोहित जैन को रिजर्व बैंक आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। श्री जैन केंद्रीय बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में भी कार्यरत हैं। वे 3 मई 2026 को या उसके बाद कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्षों की अवधि के लिए इस पद पर बने रहेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल रात चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: सुनिले हिंदी रे संवाद रिले करी प्रचार कलु आकाशवाणी दिल्ली रु। श्रोतामने कार्यक्रम सुनछंती आकाशवाणी जयपुर केन्द्र रु। सुनंतु ଭକ୍ତିଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦନା। ସୁନ୍ଦର ସକାଳର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସମଗ୍ର ବାତାବରଣ ମଙ୍ଗଳମୟ। ଜଗତକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଫୁଲର ମହମହ ବାସ୍ନା ସାଙ୍ଗ

श्री रामचरितमानस जैसे विशाल ग्रंथ की रचना करने में गोस्वामी तुलसीदास जैसा विनयी भक्त अपने को सर्वथा अक्षम तथा असमर्थ पाता है। उनका कहना है, मेरा भाग्य छोटा है और अभिलाषा बहुत बड़ी। मन में भरोसा इस बात का है कि उनकी कविता में श्री राम का प्रताप है, और भला संग मिलने पर बड़प्पन किसने नहीं पाया।

0: पादनं यावत् नूतन मतदानं भविष्यति। मतगणना मई मासस्य चतुर्विंशति दिनांके भविष्यति। पश्चिम बंगाले दक्षिण चतुर्विंशति परगना जनपदस्य पंचदश मतदान केन्द्रेषु ह्यः जाते पुनर्मतदाने प्रायः 90% यावत् मतदानं जातम्। द्वयोः विधानसभा क्षेत्रयोः पुनर्मतदानं शान्तिपूर्ण रीत्या सम्पन्नतांगतम्। निर्वाचनायोगेन सम्बद्ध निर्वाचनाधिकारिभिः पर्यवेक्षकैः च प्राप्त प्रतिवेदनानाम् आधारे पुनर्मतदानस्य आदेशः प्रदत्तः आसीत्। पश्चिम बंगाल केरल तमिलनाडु असमेषु केन्द्र शासित प्रदेशे पुडुचेरी इत्यत्र संजातेभ्यः विधानसभा निर्वाचनेभ्यः मतगणना श्वः भविष्यति। निर्वाचनायोगेन पश्चिम बंगाल निर्वाचनेषु केवलं केन्द्र प्रशासनस्य कर्मचारिणः मतगणनायाः पर्यवेक्षक रूपेण नियुक्ताः। निर्वाचनायोगस्य अस्मिन् निर्णये भारतस्य सर्वोच्च न्यायालयः हस्तक्षेपं कर्तुं निराकृतवान्। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा न्यायमूर्ति जॉय मल्या बागची चेत्येतयोः पीठेन निर्देशः दत्तः यत् आयोगस्य दिङ्निर्देशानां पालनं कठोरतया भवेत्। स्नातक चिकित्सा शिक्षायां प्रवेशाय नीट यूजी इति राष्ट्रिय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा अद्य आयोजयिष्यते। परीक्षा मध्याह्ने द्विवादनादारभ्य सायं पञ्चवादनं यावत् प्रचलिष्यति। नीट इत्येतस्य सूचनानुसारेण परीक्षा केन्द्रे प्रवेशानुमतिः मध्याह्ने 12:30 यावदेव भविष्यति। नीट यूजी इत्येतस्य आयोजनं राष्ट्रिय परीक्षण संस्थया स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रालयस्य शिक्षा मन्त्रालयस्य च अनुमोदनेन स्नातक चिकित्सा शिक्षायां प्रवेशाय 19,200 वर्षात् भवति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी डॉ आर बाला सुब्रमण्यम इत्येतस्मै डॉ जोरम अनिया इत्यस्यै च नीति आयोगस्य पूर्णकालिक सदस्यत्वेन नियुक्त्यर्थं शुभकामनां प्रदत्तवान्। सामाजिक संचार पटले एकस्मिन् संदेशे श्रीमोदिना उक्तं यत् तयोः समृद्धानुभवः विभिन्न प्रकरणेषु गहनः अवबोधः नीति निर्माणं सुदृढं करिष्यति। असौ विश्वासं प्रकटितवान् यत् तयोः योगदानेन विभिन्न क्षेत्रेषु नवाचारः विकासः च वर्धिष्येते इति। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः जमैका सूरीनाम त्रिनिदाद टोबैगो चेत्येतेषाम् आधिकारिक यात्रायै प्रस्थास्यति। एषा यात्रा अस्य मासस्य 10 दिनांकं यावत् प्रचलिष्यति। गिरमिटिया समुदायानाम् उपस्थितेः कारणादेव एतेषां देशानां भारतेन सह विशिष्टः सम्बन्धः अस्ति। विदेशमन्त्रालयेन स्वीये वक्तव्ये उक्तं यत् यात्रावधौ डॉ जयशंकरः त्रिदेशानां नेतृत्वैः सह मेलनं करिष्यति। आईपीएल इति क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां चेन्नईस्थे एमए चिदम्बरम क्रीडांगणे चेन्नई सुपर किंग्स दलेन मुंबई इंडियंस दलम 8-0 पराजितम्। हैदराबादस्य राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रीडांगणे मध्याह्ने 3:30 सनराइजर्स हैदराबाद दलम कोलकाता नाइट राइडर्स दलम सम्मुखीकरिष्यति। तत्रैव अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे सायं 7:30 गुजरात टाइटन्स दलम पंजाब किंग्स दलम सम्मुखीकरिष्यति। इति वार्ताः।
1: सुनिले संस्कृतिरे संवाद रिले करी प्रचार कलु आकाशवाणी दिल्लीरु। श्रोतामाने कार्यक्रम शुणुछन्ति आकाशवाणी जयपुर केन्द्ररु। शुणन्तु आजि प्रचार हेबाकु थिबा कार्यक्रम सम्पर्करे सूचना। सकाळ 7:25 शुणिबे टिकिराइज कार्यक्रम, एथिरे शुणिबे तुमपुरी पिलाटीए। सकाळ 8:30 शुणिबे सुरलहरी कार्यक्रम, शिल्पीमाने हेले जितेन्द्र पटनायक एवं मधुमिता महांती। सकाळ 8:45 शुणिबे सुगम संगीत। सकाळ 9:00 शुणिबे फोन जोगे श्रोतांक अनुरोधरे हिंदी चलचित्र गीतर कार्यक्रम हालो मो पसंद। पूर्वाह्न 10:00 शुणिबे प्रायोजित कार्यक्रम हालो स्वास्थ्य पई कथाटिए। ओडिया चलचित्रर गीत प्रचार करिबो पूर्वाह्न 10:30। दिन 11:00 शुणिबे आकाशवाणी लाइव। हिंदी चलचित्रर गीत शुणिबे दिन 12:00। दिन 2:15 संध्या 6:10 एवं राति 9:30। ओडिया भक्ति गीत शुणिबे दिन 12:00।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के फालता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर इस महीने के 21 तारीख को पुनर्मतदान का आदेश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर निर्णायक कार्रवाई के माध्यम से आतंकवाद खत्म करने के सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक। भारत आने वाला एक और LPG टैंकर हॉर्मुज जल डमरू मध्य में सुरक्षित पार किया। अमेरिका जर्मनी से अपने 5,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर सहित देश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। देश के मध्य भागों में गरज के साथ आंधी आने और बिजली गिरने की आशंका। और मध्य प्रदेश के पोल वॉल्टर कुलदीप कुमार ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा क्षेत्र का मतदान रद्द कर दिया है। इस क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को पुनर्मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। एक रिपोर्ट।

0: चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया को रद्द करने का एक असाधारण कदम उठाया है। 21 मई को सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक बूथ भी शामिल हैं, पर फिर से मतदान होगा। वोटों की गिनती 24 मई को होगी। चुनाव आयोग ने बताया कि यह फैसला 29 अप्रैल को मतदान के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की रिपोर्टों के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्टों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन शामिल है। कई बूथों पर बैलेट यूनिट के बटनों को जानबूझकर काली टेप से ढक दिया गया था, जिससे ठीक से मतदान नहीं हो पा रहा था। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में प्रवेश करते और दूसरों की ओर से वोट डालते हुए पाया गया। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता और अविरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कौशलेंद्र।
1: पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 मतदान केंद्रों पर कल फिर से वोट डाले गए। मगराहाट पश्चिम के 11 और डायमंड हार्बर के 4 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी स्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। तमिलनाडु में इसके लिए 62 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया कि मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे।
2: मतगणना प्रक्रिया को लेकर पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ड्यूटी पर तैनात हर व्यक्ति को QR कोड वाला एक फोटो ID कार्ड जारी किया गया है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि मतगणना केंद्रों पर किसी भी तरह की गलत पहचान या धोखाधड़ी ना हो। मतगणना कक्षों और EVM स्ट्रांग रूम के प्रवेश द्वार पर सबसे अंदरूनी सुरक्षा की कमान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के हाथों में होगी। स्थानीय और राज्य पुलिस के अलावा सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए मतगणना केंद्रों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 65 कंपनियां तैनात की गई हैं। राज्य में 4,87,98,833 मतदाताओं में से 85.10% मतदान दर्ज किया गया है। महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ते हुए 2,52,59,596 वोट डाले, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,35,34,720 रही। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे समाप्त होगी। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी वर्ष 2019 से नीट UG परीक्षा का आयोजन कर रही है। एजेंसी ने उम्मीदवारों के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंक का खात्मा करने के मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कल नई दिल्ली में शौर्य कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान सशस्त्र बलों के अतुलनीय शौर्य ने इसे भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बना दिया है।
3: शौर्य केवल शारीरिक शक्ति या युद्ध कौशल का नाम नहीं है। शौर्य हमारे मन की वह अटल अवस्था है, जहाँ राष्ट्र प्रेम के आगे सारे सुख, सारे मोह, सारे भय यह व्यर्थ हो जाते हैं। शौर्य वो दिव्य भाव है जहाँ हमारा एक सैनिक अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों के स्नेह के बंधन से ऊपर उठकर माँ भारती की रक्षा का व्रत लेता है।
1: भारत ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। कार्यक्रम में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और उप रक्षा प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ उपस्थित थे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सेल ब्रॉडकास्ट प्रणाली, CBS और सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल जैसी तकनीकों को अपनाने से आपदा से निपटने की तैयारी में काफी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कल सेल ब्रॉडकास्ट चेतावनी

0: प्रणाली के शुभारंभ के अवसर पर कहा कि इससे शासन व्यवस्था में सुधार होगा और प्रत्येक नागरिक तक समय पर और प्रभावी ढंग से सूचना पहुंच सुनिश्चित होगी। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सेल ब्रॉडकास्ट प्रणाली का शुभारंभ किया था। इसे दूरसंचार विभाग के अंतर्गत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सी.डॉट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के सहयोग से स्वदेश में ही विकसित किया है। प्रणाली का कल पूरे देश में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज सुबह जमैका के किंगस्टन पहुंचे। श्री जयशंकर जमैका, सूरीनाम और त्रिनिदाद और टोबैगो की सरकारी यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि जमैका के विदेश मंत्री कमीना जे स्मिथ ने कहा कि वे अगले दो दिन में जमैका के नेताओं, व्यापारियों और प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस 10 मई तक अपनी यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर तीन देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। भारत आ रहे मार्शल आइसलैंड ध्वज के एलपीजी टैंकर एमटी सर्वशक्ति ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित पार कर लिया है। इसमें 46,313 मीट्रिक टन एलपीजी है और 18 भारतीयों सहित चालक दल के 20 सदस्य सवार हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस टैंकर के 13 मई तक विशाखापट्टनम पहुंचने की उम्मीद है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और भारतीय ध्वज वाले जहाजों से जुड़ी कोई घटना दर्ज नहीं की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका जर्मनी में सैन्य उपस्थिति में काफी कमी करेगा। इससे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ अमेरिका का विवाद और बढ़ गया है। श्री ट्रंप यूरोपीय सुरक्षा के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पेंटागन ने शुक्रवार को पहले घोषणा की थी कि वो जर्मनी से लगभग 5,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा। शनिवार को इस कदम के कारण के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और कहा कि इससे भी बड़ी कटौती होने वाली है। इससे पहले जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने कहा कि जर्मनी में अमेरिकी सैनिकों की नियोजित कटौती से यूरोप को अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। माली में सुरक्षा बलों ने लक्षित हवाई हमलों में 200 से अधिक हमलावरों को मार गिराया है। सरकारी टेलीविजन के अनुसार शुक्रवार को सुबह ये हमले सशस्त्र आतंकियों के एक बड़े समूह को निशाना बनाकर किए गए। ये आतंकी पड़ोसी सीमा क्षेत्र से आए थे और हमलों की तैयारी कर रहे थे। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम के साथ साथ केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में गरज के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, बिहार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, रायलसीमा, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिम बंगाल में गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। इस बीच दिल्ली में कल रात मौसम में अचानक बदलाव आया और बारिश ने भीषण गर्मी से राहत दिलाई। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: भुवनेश्वर में इंडियन इंडोर पोल वॉल्ट प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के कुलदीप कुमार ने पुरुषों के पोल वॉल्ट में 5.41 मीटर ऊंचाई की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीत लिया। कुलदीप कुमार ने पहले ही प्रयास में ये उपलब्धि हासिल कर देव कुमार मीणा के 5.40 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। उधर डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में आज फ्रांस का सामना चीन से होगा। सेमीफाइनल में कल फ्रांस ने भारत को 3-0 से हराया था। इस बीच उबर कप के फाइनल में आज चीन का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। इधर आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया। चेन्नई में कल पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 159 रन बनाए। जवाब में चेन्नई ने 18 ओवर और एक गेंद में 2 विकेट के नुकसान पर 160 रन बनाकर मैच जीत लिया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से और गुजरात टाइटंस का सामना पंजाब किंग्स से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव संतोष कुमार सारंगी ने आज अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रन फॉर सन मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री सारंगी ने कहा कि इस दिन सौर ऊर्जा का उपयोग करके अधिकतम बिजली प्राप्त करने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है।
2: सूर्य किरण हम लोगों के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसका इतने सालों तक हम लोग व्यवहार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज उसका व्यवहार करके देश में 1,50,000 मेगावाट का इंस्टॉलेशन हो चुका है और भी आगे बढ़ना है हम लोगों को।
0: भारतीय सेना का एक दल भारत कंबोडिया द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास CINBX2 के दूसरे संस्करण के लिए कंबोडिया रवाना हो गया है। सेना ने बताया कि अभ्यास कल से 17 तारीख तक नॉम फॉर

0: अरियास प्रांत के शाही कम्बोडियाई वायुसेना प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया जाएगा। अभ्यास में कंपनी स्तर के संयुक्त प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। श्री जैन इससे पहले बैंक में कार्यकारी निदेशक थे। वे 3 मई 2026 से 3 वर्ष की अवधि के लिए इस पद पर रहेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद लवलीन। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना में केंद्रीय कर्मियों की पर्यवेक्षक के रूप में तैनाती का निर्वाचन आयोग का निर्देश बरकरार रखने को लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से लिया है। अमर उजाला कहता है मतगणना कर्मियों के चयन के लिए आयोग स्वतंत्र, आदेश की जरूरत नहीं। देशबंधु ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा तृणमूल कांग्रेस को झटका बताया है। अब आपात स्थिति में पलक झपकते ही अलर्ट होगा देश, दैनिक जागरण की पहली खबर है। पत्र ने आगे लिखा है केंद्र ने लॉन्च किया सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम, बिना इंटरनेट भी पहुंचेगा फ्लैश मैसेज। हिंदुस्तान ने इसे सुर्खी दी है करोड़ों मोबाइल में गूंजी इमरजेंसी वाली घंटी। पश्चिम एशिया में संघर्ष के असर को जनसत्ता ने बॉक्स में देते हुए लिखा है लगातार तीसरे महीने कीमतें बढ़ी। पत्र ने इसे संकट और चिंता बताते हुए लिखा है खाने के दाम बढ़ने से रोजगार पर विपरीत असर की आशंका। दैनिक भास्कर की खबर है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से 7 की जगह 2.5 घंटे में पहुंचेंगे, चार धाम यात्रा 5 से 6 दिन में पूरी हो जाएगी। पत्र ने चार धाम यात्रा के दौरान यमुनोत्री से बद्रीनाथ तक के सफर की जानकारी विस्तार से दी है। नवभारत टाइम्स ने बदलता मौसम शीर्षक से लिखा है दिल्ली में 2050 तक ज्यादा होने लगेगी बारिश, गर्म दिन हटेंगे लेकिन रात तपेगी। राजस्थान पत्रिका की विशेष खबर है सोच का बोझ, हर रात 28 मिनट की नींद खो रहे हैं लोग, पढ़ाई करियर और आर्थिक स्थिरता की चिंता। पत्र के अनुसार दुनिया में 28 करोड़ लोग डिप्रेशन से और 30 करोड़ से ज्यादा एंजाइटी से है परेशान, जिसका प्रमुख कारण ओवरथिंकिंग। समुद्र के भीतर फहराया सबसे बड़ा तिरंगा, हिंदुस्तान ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है अंडमान निकोबार में दुनिया का सबसे लंबा चौड़ा ध्वज फहराकर बनाया गया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, स्वराज द्वीप पर गोताखोरों ने पूरा किया अभियान। पंजाब केसरी के अनुसार कश्मीर को पीछे छोड़ विदेश में धमाल मचाएगा लद्दाख का पश्मीना। पत्र कहता है कि पहले लद्दाख के चरवाहे कच्चा ऊन कम दामों पर बेच देते थे, अब कुछ बड़े बदलावों के साथ लद्दाख में ही आधुनिक संयंत्र और फिनिशिंग यूनिट लग रही है, जिससे लद्दाख के शॉल ग्लोबल हब बनने की तैयारी में है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के फालता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर इस महीने के 21 तारीख को पुनर्मतदान का आदेश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर निर्णायक कार्रवाई के माध्यम से आतंकवाद खत्म करने के सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक। भारत आने वाला एक और एलपीजी टैंकर ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य सुरक्षित पार किया। अमेरिका जर्मनी से अपने 5,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर सहित देश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। देश के मध्य भागों में गरज के साथ आंधी आने और बिजली गिरने की आशंका। और मध्य प्रदेश के पोल वॉल्टर कुलदीप कुमार ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। इलेक्शन कमीशन ऑर्डर्स रीपोलिंग अक्रॉस ऑल 285 पोलिंग स्टेशंस एट फालता असेंबली कंस्टिट्युएंसी इन वेस्ट बंगाल ऑन द 21st ऑफ दिस मंथ। Operation Sindoor reflects government's unwavering resolve to eliminate terrorism through decisive action, says Defence Minister Rajnath Singh. Another India-bound LPG tanker safely crosses Strait of Hormuz. United States to pull over 5,000 troops out of Germany. IMD forecasts heavy rainfall over some parts of northeastern and peninsular India. Central plains to witness thunderstorms and lightning today. And Madhya Pradesh pole vaulter Kuldeep Kumar breaks national record at Bhubaneswar. And now the news in detail. The Election Commission has taken the extraordinary step of cancelling the entire voting process in the Phalta Assembly constituency of South 24.

0: एबे गेल गैस पीएनजी कनेक्शन नेबा आहुरी सहज सिक्योरिटी डिपॉजिट करिबार तीनोटी सरल उपाय समुदाय 4000 टंका एका सहित किबा 1000 दिन पर्यंत दिन पिछा 5 टंका नचेत प्रत्येक दिन 1 टंका
1: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करी प्रथम गैस बिल रे पांतो 200 टंका छाड ओ रेफरल उपरे कैशबैक आज ही कॉल करंतु 1800102982
0: गेल गैस सहज कनेक्शन भरोसा योग्य गैस
2: कार्यक्रम रे शेषरे जितेन्द्र पटनायक एवं मधुमिता महंती गायछन्ती हरिकृष्ण मिश्रंक रचनारू।

0: एबे गेल गैस पीएनजी कनेक्शन नेबा आहुरी सहज सिक्योरिटी डिपॉजिट करिवार तीनोटी सरल उपाय समुदाय 4000 टंका एका सहित किबा 1000 दिन पर्यंत दिन पिछा 5 टंका नचेत प्रत्येक दिन 1 टंका
1: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करी प्रथम गैस बिल रे पांतो 200 टंका छाड़ और रेफरल उपरे कैशबैक आज ही कॉल करंतु 1800102982
0: गेल गैस सहज कनेक्शन भरोसा योग्य गैस
2: मध्यस्थता ड्राइव 2.0 मान्यवर सुप्रीम कोर्टर एक नूतन प्रचेष्टा आपणकर मामला कोर्टरे वर्ष वर्ष धरी चालू कि वर्ष वर्ष धरी कोर्टरे न्यायपाई अपेक्षा करूछंती कि एबे आसीछि एक सहज द्रुत एवं प्रभावशाली उपाय मध्यस्थता कौनसी खर्च बिना आपण निजे भाग नै आलोचना माध्यमरे आपणकर विवादर स्थायी समाधान करंतु दुई पक्ष परस्पर बसिकी सहमति रे

0: मो पसंद
1: भगवंत नाय नमस्कार।
0: हाँ नमस्कार कुहंतु।
1: मो ढिलांचल कहूँ बलांगीर जिल्ला रो।
0: केते दिन परे आपण कहिले ए कार्यक्रम रे?
1: ट्राए तो करूचे आओ तो मुबल तो लागु नथिला दुख लागितला जेमते लाइव फोनिन कार्यक्रम कथा आपण गीता मन को आपण को वर्तमान जेते भी ट्रैफिक जाम होचे गाड़ी चले लेबे चालो नाते से पाई हालो मो पसंद को जेते गाड़ी वर्तमान गियो काटे सतुर अस्सी नब्बे रे फेरले भी जाऊ नाते गाड़ी कौन करवा
0: यही तो पुणी गाड़ी छाड़ला
1: आज गाड़ी छाड़ा वो ट्राफिक
0: आज्ञा कौन तो गीत शुणी
1: आज प्यार बदलना जाना मस्तम की तरह कहते अलगा जगनिक
0: अलका जगनिक।
1: हाँ तो बहुत सुंदर गीत बहुत खुशी लगे अलगा जगनिक कंठ गीत
0: गोटे पद गायकी शुणी दिखा
1: गीत मुझे जान रहा गीत मन रखी।

0: हेलो
1: मैडम नमस्कार
0: नमस्कार
1: जगतसिंहपुर
0: डली कहते जगत सिंहपुर
1: आज्ञा
0: हाँ कौन सब खबर जगत सिंहपुर कहतु डली
1: जगत सिंहपुर भल खबर
0: हाँ
1: खराब ना गरम लगे बेस लगुच पवन
0: हो के टेम्परेचर थी
1: पैंतीस
0: चालीस पा
1: पिओं पानी न पीला रखिया खाद्य पत्र खाइबानी पानी पीब तेल पणा
0: आपणकर जो दैनंदिन काम रे टिके व्यतिक्रम होतबो ए गरम पाई
1: आज्ञा आज्ञा
0: हां तो केमती कोन करंती सब बेले फैन तळे बसंती ना किछि गच्छ अछि आपणकर घर चारि पाखरे पवन
1: आसे हां गाटा गाटा हम बहुत गच्छ अछि
0: हां
1: गाटा गाटा हम बहुत तेन गच्छ अछि हमेशा तो मतिया बाटा रे गच्छ सब उडि जाय छला ओइले पूर्व अवस्था को फेरी आइलानी सब समस्त कोन सब गच्छ आंब गच्छ उस्त गच्छ बड गच्छ सब प्रकार गच्छ पकौ छन पकाइगिरि बड बड होइ गेलानी नडिया गच्छ अन्य प्रकार सब गणपुटा भी होइ गेलानी आउ तेणु गाँव रकृति पूर्व को फेरी आत्या सब गच्छ नहीं चले लोक मैंने सब प्रकार गच्छ सब पकईगले गच्छ ना आम चलिया आम बेल गच्छ अच्छी खरा दिन प्रचुर बेल पड़ आम सबुदिन सका ग्लास सन्या बेल ग्लास जैसे लोक मैंने भी आसान से बेल रु नौ तब चार पांच लक्ष बेल आम दे बजार रू भी आसती आम गाँ लोक
0: निम
1: खाऊ
0: बहुत
1: भीषण बेल पड़े आम नना से गच्छ लगे
0: आज्ञा आज्ञा आज्ञा।

0: केंद्रीय कुरासिया कैलिंग जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्र भान सिंह जी का है।
1: अच्छा, सब ठीक ठाक है उधर?
0: ठीक है सर, ठीक है, इधर भी ठीक है। मौसम की वजह से ही गर्मी, इसके धूप, इसके बाद बादल और

0: जो पानी की तरह उलट पुलट मुद्दा सेहत का विषय ध्यान
1: रखना चाहिए। वो तो है, गर्मी में कैसे सेहत का आप देखेंगे वो सब सोचना है। अभी
0: छोटे छोटे बच्चे लोग इधर आते हैं तो हाँ। किसे रखना।
1: बोलिए आपका पसंदीदा गाना क्या, गाना सुनेंगे?
0: फिल्म का नाम है कुमार लखानी।
1: ठीक है, धन्यवाद।

0: नमस्कार आज्ञा।
1: नमस्कार
0: नवीन कुमार जयपुर कुमार साहेब कहते आज्ञा।
1: केमती अच्छा नवीन?
0: हाँ भल अच्छे आज्ञा।
1: कौन सब शुणुंच आकाशवाणी जयपुर रु?
0: सब आज्ञा मुझ तो सब कार्यक्रम शुणी आज्ञा। मुझे कुआडे बाहर जाइबी बोले सीदिन रेडियो बंद थी।
1: अच्छा
0: जदि मु घर अच्छी बोले सब बेले रेडियो शुणी आज्ञा। सब कार्यक्रम शुणी सब भल लगुच।
1: बड़ रेडियो रखी ना फोन रे सुनुंच?
0: ना आज्ञा रेडियो अच्छे।
1: हेले आपन को घर लोक सुनुथिबे साई पडसा भी सुनुथिबे?
0: हां घरे भी सुनुचथि आज्ञा। जे से तांगुने सुनुथिबे सते इंटरेस्ट देखो छिने से मन घर मुझ जाई जन मात्र सुनुचबे तांके भी सुनुचथि
1: से माने भी सुनंती आपन भी सुनंती नहीं?
0: हां हां आज्ञा।
1: हां बहुत बढ़िया ठीक अछि। आपन को पसंद रो गीत कहंतु
0: आज गीत दि आज्ञा।
1: ठीक अछि बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करथिबारु नवीन।
0: नमस्कार आज्ञा।
1: नमस्कार।

0: हाँ नमस्कार मैम।
1: नमस्कार
0: जी, मैं छत्तीसगढ़ बेमेतरा जिला वार्ड नंबर 20 से बोल रहा हूँ मैम। सुरेश कुमार सारथी। पहली बार फोन लगा मैम।
1: अरे वाह, आपको वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम पे।
0: धन्यवाद मैम।
1: हाँ तो सुरेश जी, आपके बारे में बोलिए, जानना चाहेंगे हम।
0: जी मैम, जैसे मेरा नाम सारथी है वैसे मेरा काम सारथी का है। मैं ड्राइवर हूँ मैम।
1: आप कौन सा गाड़ी चलाते हैं?
0: मैं सभी गाड़ी चलाता हूँ मैम, बस ट्रक प्राइवेट गाड़ी चलाता हूँ मैम।
1: हाँ हाँ, अच्छा कैसे पता चला इस प्रोग्राम के बारे में आपको?
0: जी मैम, मेरा एक साथी है।
1: हाँ,
0: उन्होंने बताया मैम, आज ही बताया।
1: तब तो बहुत अच्छा है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सुरेश जी बोलिए, कौन सा गाना सुनेंगे?
0: जी मैम, आने की है, जीने की राह है मैम।
1: जीने की राह, अच्छा कौन सा गाना?
0: आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बुहार, बड़ी मस्तानी है।
1: हाँ, ये थिला आजिर फोन इन प्लीज कार्यक्रम हेलो मो पसंद। समस्तंगु धन्यवाद जो मैंने जोड़ी हेले कार्यक्रम सहित, आउ समस्तंगु भी धन्यवाद जो मैंने सुनिले कार्यक्रम प्राय गोटे घंटा धरी। तेबे हेलो मो पसंद कार्यक्रम प्रचारित हुए प्रति रविवार सकाळ 9:10 जाए, आउ एहार आगुआ रेकर्डिंग हुए प्रति शनिवार सकाळ 10:30। आसंता

0: नमस्ते
1: नमस्ते
0: जी, योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
1: तो
0: जी
1: बोलिए, आपका पसंदीदा गाना क्या? गाना सुनेंगे?
0: प्रेम रतन धन पायो का टाइटल सॉन्ग सुनवा देंगे।
1: अच्छा, धन्यवाद।
0: हाँ जी,
1: धन्यवाद
0: जी, और नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं
1: आपको भी।

0: हेलो मोपसंद।
1: हेलो मोपसंद, आकाशवाणी जयपुर उड़ीसा
0: जी। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: पूर्णिया जिला उत्तर दिनाजपुर पश्चिम बंगाल से जमेंद्र।
1: चाकुलिया का क्या खबर है?
0: चाकुलिया का खबर बिल्कुल अभी अभी हाल और बहुत सारे खुशियाँ बटोरे और खुशियाँ दिए लोगों को।
1: हाँ
0: जी,
1: इसीलिए आप सब लोग रिलैक्स में है अभी
0: जी।
1: अच्छा, चाकुलिया ऐसा नाम क्यों है?
0: ये इतना पहले से थे यहाँ के पुराने बड़े दीदी कह सकता की चाकुलिया क्यों नाम है।
1: अच्छा बोलिए, आपका आपका पसंदीदा गाना बोल दीजिए।
0: जी, पसंदीदा गाना तीन दिल का क्या तुझे। और गाने का बोल, दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जहाँ भी दे दूँ। माता मुझे आवाज़ दी।
1: ठीक है, फिर चलिए सुनते हैं
0: जी। बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: नमस्कार
0: नमस्कार हेलो मो पसंद आकाशवाणी जयपुर उड़ीसा
1: जी बिल्कुल आकाशवाणी जयपुर उड़ीसा में हमने फोन लगाया है।
0: हाँ जी,
1: और मिल भी गया है।
0: क्या बात है, नाम बोल दीजिए।
1: दशरथ जैन।
0: अच्छा, कहाँ से हैं आप
1: जी? मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के छोटे से गांव नाटाराम से ध्वनि तरंग के जरिए आकाशवाणी जयपुर उड़ीसा पहुंच गए हैं।
0: क्या बात है, आप तो दिल खुश कर दिया, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने।
1: यहाँ का माहौल, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का माहौल बहुत अच्छा है, और हम उम्मीद भी करते हैं कि उड़ीसा राज्य में भी बहुत अच्छा माहौल होगा।
0: हाँ जरूर, यहीं पर तो हमेशा अच्छा माहौल ही होता है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो क्या करते हैं आप दशरथ जी, बोलिए।
1: जी मैं सैलून का काम करता हूँ, हेयर कट की दुकान है।
0: हाँ जी।
1: और हेयर कट का काम करते करते साथ में मोबाइल ऐप के जरिए एक कोने में सुंदर सी खुशबू के साथ आकाशवाणी का प्रसारण भी होता रहता है यहाँ पर,
0: इसीलिए इतना सुंदर सुंदर बात आप बोल रहे हैं।

0: वो भी अनोखा स्टाइल से बोल रहे हैं।
1: जी, अनोखा स्टाइल और हिंदी में बात करना, आप लोगों की कन्नड़ और उड़िया भाषा अलग अलग राज्य की अलग अलग संस्कृति होती है।
0: हाँ जी,
1: सभी की एक ही प्लेटफॉर्म पर तमाम भाषाएं मिलती हैं, वो भी है आकाशवाणी के जरिए।
0: जी,
1: तो हमने भी कोशिश की हिंदी में बात करने की आप सभी से।
0: आप क्या नॉन हिंदी हो?
1: जी, हम हिंदी बोलते हैं और हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र की जो भाषा है, प्राइमरी भाषा है,
0: हाँ जी,
1: उसको हम मालवी भाषा बोलते हैं।
0: मालवी में आप बात करते हैं?
1: जी, हम गांव के लोग जो आपस में बात करते हैं तो वो मालवी भाषा में बात करते हैं।
0: हाँ,
1: फिर किसी आकाशवाणी में बात करते हो तो उसमें हिंदी का उपयोग करते हैं।
0: थोड़ा हमको भी मालवी सुनाइए ना।
1: अच्छा, मैंने तो घनो बढ़िया लागे उड़ीसा राज्य को यो प्रोग्राम, बड़े चोखो लागे और हूं तो घना बढ़िया लागे सा, आपकी सबकी वार्ता हम लागे माने और मन खुश हो जावे।
0: वाह, बहुत स्वीट लैंग्वेज है ना। तो क्या क्या सुनते हैं आकाशवाणी जयपुर से आप? सिर्फ यही प्रोग्राम?
1: तो यही आपकी एक क्षेत्रीय भाषा में कार्यक्रम होते हैं ना।
0: हाँ जी,
1: समझ में कम आते हैं।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: फिर भी हम इसका प्रसारण चालू रखते हैं।
0: हाँ जी,
1: कि कभी कभी ये भाषा हमारे समझ में आ जाए।
0: हाँ, ये आप बहुत अच्छा करते हैं
1: प्रोग्राम। जी, ज्यादातर तो ये फोन इन प्रोग्राम सुनते हैं, इसमें बहुत दूर दूर के लोग शामिल होते रहते हैं, तो वो खुशी होती है। कोई शिमला से हो, मेघालय से, कोई आसाम से, कोई उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अलग अलग राज्य से जब श्रोता बंधु एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं, जयपुर से भिड़ते हैं,
0: वो अच्छा लगता है,
1: मजा आ जाता है। हाँ, कि यार कहाँ मध्य प्रदेश और कहाँ उड़ीसा।
0: हाँ जी, जैसे जैसे रंग बिरंगी फूल एक धागे से गुथा जाता है तो माला कितना सुंदर लगता है, ठीक वैसे ही भारत वर्ष की चारों ओर से फोन आता है इस प्रोग्राम में। तरह तरह के लोग बात करते हैं अपनी संस्कृति के बारे में, कल्चर के बारे में, अपनी त्योहार के बारे में, और तरह तरह की भाषा सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है।
1: जी, और हमने लोगों को कहते भी हैं कि जहां न पहुंचे प्राणी वहां पहुंच गई आकाशवाणी।
0: क्या बात है, दिल खुश कर दिया।
1: ये भी कहते हैं, एक राय भी देते हैं कि भाई साहब आप उदास उदास क्यों हैं, रेडियो सुना करिए। ऐसा क्या है रेडियो में, आकाशवाणी में ऐसा क्या है? हम बताते हैं कि आकाशवाणी सब कुछ है, आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है, हमारे मम्मी के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, सभी के लिए इसमें एक ही जगह है। और ज्यादा पानी पीने वाला और आकाशवाणी सुनने वाला कभी बीमार नहीं होता है।
0: बहुत अच्छा अच्छा बात आप बोलते हैं, दिल खुश कर दिया आपने। बोलिए आपका पसंद का गाना, क्या गाना सुनेंगे?
1: बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल।
2: अरे दीवानो मुझे पहचानो।

0: में समझा है कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो मैं हूँ डॉन।
1: राम राम।
2: राम राम।
1: और जी क्या हाल है?
2: हाल बहुत अच्छा है, आप ही का बताइए।
1: मैं भी ठीक हूँ जी, पिछली बार फोन नहीं मिला जी।
2: अच्छा, इसीलिए थोड़ा उदास हैं आप ना?
1: नहीं उदास तो मैं कभी नहीं होता जी।
2: हाँ। तो पाजी, आज एक मंत्र सुनने के लिए दिल तड़प रहा है, जो गुरुद्वारे में

0: बोला जाता है, एक ओंकार सतनाम।
1: ठीक है जी, थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ।
0: हाँ।
1: एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी साहिबम जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच।
0: वाह, बहुत अच्छा लगता है ये सुनने में।
1: जी बिल्कुल।
0: हाँ, हाँ। तो बोलिए आपका पसंदीदा गाना, क्या गाना सुनेंगे?
1: जी मैं अपना परिचय दे दूं दोस्तों को।

0: नानक ओसी भी सच।
1: वाह, बहुत अच्छा लगता है ये सुनने में।
0: जी बिल्कुल।
1: हाँ, तो बोलिए आपका पसंदीदा गाना, क्या गाना सुनेंगे?
0: जी मैं अपना परिचय दे दूं दोस्तों को। सुरेश गगनेजा जलालाबाद वेस्ट पंजाब से ही।
1: हाँ जी,
0: वैसे तो मेरी आवाज से मेरे दोस्त पहचान लेते हैं, आप भी पहचान लेते हैं।
2: नरेंद्र महाकुड़ वासुदेवपुर भद्रपुर को।
1: अच्छा, वर्तमान केमिति गरम होउछि?
2: हाँ गरम होउछि, दिन दिन टिके बर्षा हेइथिला, जो आमर काल बैशाखी हेइथिला, बर्तमान चारि पांच दिन हब बर्षा नाही, आमारि बहुत गरम होउछि।
1: अच्छा, चाष जमि अछि कि आखा पाखरे?
2: आमर भी अछि।
1: अच्छा, तो कुंतु को गीत सुनिबे?
2: एटा उपकार फिल्म रो बोध
1: अछि। हम्म, मेरे देश की धरती।
2: हाँ, देश की धरती। हाँ पापा, आउ जे कविता गुटे पढ़ी थांती,
1: अल्प टिके पढ़ी दियंतु।
2: पटक आयाकु चाहिले एही पटकि जाय ना समय, चालू थाए छि विराम न नै एही तार परिचय। मनुष्य जीवन में समय और मूल्य कोना करिनो ना, अधसा काम तो नष्ट कर देला, आउ केबे से फेरना। आजि काम आजि करि शेष करि देले बुझो होइ रहे नाही, आसंता कालीर काम करिथिले भाबिबार किछि नाही। समय को जी सठिक भाव रे परिचय दिनी जोग, समय तार सुधरै एकटा उचित मार्ग।
1: आपनकर ई समय कविता सुनु सुनु ई हेलो मो पसंद कार्यक्रम रो भी समय हे गलानी। समस्तंक ठु आमे चलंतु विदाय मागिबा। आजि बहुत बहुत धन्यवाद आपनकु, आपन फोन करिछंती आ आम सहित कथा हेछंती, समय को नै सुंदर कविता टिए सुनैछंती समस्तंक।

0: ये थिला आजर फोन इन पिच कार्यक्रम हेलो मो पसंद से मन को धन्यवाद दोछु जो माने कार्यक्रम रे जोड़ी हेले निज निज पसंद रा हिंदी चलचित्र गीत सुनिया पे अनुरोध कले जो मन कर फोन कॉल लागी पारिनी आसंता शनिवार से माने आउ थरे ट्राई करंतु देखिबे आपन को फोन निश्चय लागिबो तेबे फोन लगेबा पई नंबर हेला 06854230690 आज पई रहुछु नमस्कार। सुनिले फोन जोगे श्रोताक अनुरोध रे हिंदी चलचित्र गीतर कार्यक्रम हालो मो पसंद उपस्थापना कले दमयंती बैकर।
1: एबे सीएनजी भरी करंतु सीधा संचय
2: गेल गैस सीएनजी स्टेशन रे सीएनजी भरंतु एवं पैसा आपे आपन को फ्यूल वॉलेट रु पैठ होई जीव। ऑटो पई 10000 टका, कार ओ छोटो जना पई 15000 टका ओ बस तथा बड़ जना पई 20000 टका पर्यंत लाभ उठांतु जहा केवल नुवा सीएनजी गाड़ी किबा सीएनजी किट लगाइले सीमित समय पई उपलब्ध।
1: अधिक जानिबा पई कॉल करंतु 1800102928।

0: ପୌର ପରିଷଦ ସୁନାବେଳ।
1: एबे गेल गैस पीएनजी कनेक्शन नेबा आहुरी सहज। सिक्योरिटी डिपॉजिट करिबार तीनोटी सरल उपाय। समुदाय 4000 टंका एका सहित किबा 1000 दिन पर्यंत दिन पिछा 5 टंका नचेत प्रत्येक दिन 1 टंका।
2: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करी प्रथम गैस बिल रे पांतो 200 टंका छाड़ और रेफरल उपरे कैशबैक। आजि कॉल करंतु 1800102982।
1: गेल गैस सहज कनेक्शन भरोसा योग्य गैस।
3: श्रोतामने कार्यक्रम सुनछंती आकाशवाणी जयपुर केन्द्ररो। आम केन्द्रर कार्यक्रम प्रसारित होछि मीडियम वेभ्रे 204.5 मीटर तथा 1467 किलोहर्ज जोगे एफएमर 103.6 मेगाहर्ज जोगे। यह व्यतीत आपण माने मोबाइल फोन रो न्यूजन ए

एबे गेल गैस पीएनजी कनेक्शन नेबा आहुरी सहज सिक्योरिटी डिपॉजिट करिबार तीनोटी सरल उपाय समुदाय 4000 टंका एका सहित किंबा 1000 दिन पर्यंत दिन पिछा 5 टंका नचित प्रत्येक दिन 1 टंका।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद यह निर्णय लिया गया है। पर्यवेक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं की सूचना दी है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन पर जानबूझकर काला टेप लगाया गया था। अनधिकृत लोगों का मतदान केंद्रों में प्रवेश और दूसरों का वोट डालने की भी घटनाएं सामने आई हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कल कड़ी सुरक्षा के बीच 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे।
1: जनादेश 2026।
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
1: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
2: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
1: जनादेश 2026।
0: दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सुबह 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया।
3: इमीडिएटली हमारी गाड़ियां यहां पे पहुंची और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हमने स्टार्ट करा। फ्रंट साइड से हमने अपने स्पेशलाइज्ड व्हीकल, लैडर्स, फायर इक्विपमेंट्स, कटर्स वगैरह डिप्लॉय करके आगे से टोटल जो है 15 व्यक्तियों को यहां से रेस्क्यू करा। टोटल 9 इसमें 4 बॉडीज रिकवर करी जो कि दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दी गई है।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग लगने की दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इस मुश्किल घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल सरकारी एजेंसियों, निर्वाचन आयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मीडिया पर लगातार हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष अब न्यायपालिका को भी निशाना बना रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि इन दलों को यह एहसास नहीं है कि वे देश के लोकतंत्र की नींव पर हमला कर रहे हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में 1975 में देश पर इमरजेंसी थोपी गई। कांग्रेस सरकार में संवैधानिक पदों और एजेंसियों के शीर्ष पद पर सीधे सरकार के स्तर से नियुक्ति की जाती थी, जबकि अब ये नियुक्तियां समितियों द्वारा की जाती हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि देश की जनता कांग्रेस पार्टी की हकीकत जानती है और इन दलों को ऐसा सबक सिखाएगी जो वे कभी नहीं भूलेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री से विकसित बिहार के लक्ष्य को साकार करने पर चर्चा हुई। श्री चौधरी ने बताया कि रेल मंत्री से मुलाकात में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, बेहतर रेल संपर्क और बिहार के समग्र विकास में तेजी लाने पर विचार विमर्श हुआ। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे समाप्त होगी। परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मूल के विद्यार्थी भी आज नीट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। दुबई और शारजाह में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की निगरानी दुबई में भारत का महावाणिज्य दूतावास कर रहा है। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। ये प्रेस की स्वतंत्रता के प्रयासों को प्रोत्साहित करने और विकसित करने तथा विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करने का अवसर है। इस वर्ष का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: तैयार करती हैं किसी भी खतरे से निपटने के लिए और किसी भी जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनका इस्तेमाल करने के लिए। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र प्रेस अनिवार्य है और इसीलिए दुनिया भर में आज प्रेस की स्वतंत्रता की सेलिब्रेट किया जा रहा है, का एक सम्मान किया जा रहा है और हमें भारत जैसे लोकतांत्रिक और विकासशील देश में भी प्रेस की स्वतंत्रता को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए।
1: उच्च शिक्षा विभाग आनुकूल्य भुवनेश्वर लोक सेवा भवन में जातीय शिक्षानीति 2020 कार्यकारिता को चलिथिबा प्रज्ञा प्रेरणा कर्मशाला उद्यापनी समारोह रे राज्यपाल डॉ हरिबाबू कंभम पाटी जोगदेवे। उद्यापनी समारोह आउ किछि समय परे आरंभ हेबो। गतकालीठारु आरंभ होइथिबा एही जातीय शिक्षानीति कर्मशाला उद्बोधन दे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिछन्ति ओडिसा शिक्षा क्षेत्र रे अग्रणी राज्य भाबे वैप्लविक परिवर्तन आनिछि। एही कर्मशाला हेउछि एक मौलिक प्लाटफर्म जेउठी देशर श्रेष्ठ शिक्षाविद ओ नीति निर्धारक माने एकाठि होइ छात्र छात्रीमानक सुरक्षित भविष्यत निर्धारण करिबा दिगरे उद्यम करछन्ते। डाक्तरी स्नातक शिक्षार प्रवेश पाई आज नीट यूजी प्रवेशिका परीक्षा अनुष्ठित होउछे। देश तथा देश बाहर 5000 रु ऊर्ध्व परीक्षा केन्द्र में 22 लक्ष रु ऊर्ध्व छात्र छात्री परीक्षा देउछन्ते। जातीय परीक्षण संस्था द्वारा करा जाउथिबा एही परीक्षा अपराह्न 2:00 आरंभ होइथिबा बेले संध्या 5:00 शेष हेबो। मुख्यमंत्री जन्म अभियोग शुणाणी कार्यक्रम आसंताकाली बंद रहिबो। ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रे रखी साधारण अभियोग और साधारण प्रशासन विभाग पक्षरु एही निष्पत्ति निया जायछे। परवर्ती अभियोग शुणाणी रो तारीख जनसाधारण को संवादपत्र तथा अन्य गणमाध्यम जरिया रे जणाई दियाजियो बोली विभाग पक्षरु सूचना मिलिछे। राज्य में आज ओमफेड क्षीर दर वृद्धि पाई। निर्धारित मूल्य ठारु प्रति लिटर पिछा क्षीर दर 4 टंका वृद्धि पाई। ओमफेड पक्षरु जारी होइथिबा नूतन वर्धित दर सूची अनुसार टोन दुग्ध प्रति लिटर 50 रु 54 टंका को वृद्धि होइथिबा बेले प्रीमियम क्षीर 54 रु 58 टंका को वृद्धि पाई। सेहिभळि गोल्ड प्रीमियम क्षीर 56 रु 60 टंका एवं प्रीमियम प्लस क्षीर 60 रु 64 टंका को वृद्धि पाई। पूर्वरु एने ओमफेड पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइथिला। क्षीर दर वृद्धि पाइबा द्वारा दुग्ध चाषी माने उपकृत हेबे बोली प्राणी संपद मंत्री गोकुलानंद मल्लिक कहिछन्ती। से कहिछन्ती अनेक दिन हेबो ओमफेड क्षीर दर वृद्धि पाइ नथिला। चाषींक हित पाइ अधिक दाम रे सरकार क्षीर क्रय करिवे। प्रक्रियाकरण और परिवहन खर्च वृद्धि पाउथिबारु क्षीर दर वृद्धि आवश्यक होइ पडिथिला बोली श्री मल्लिक कहिछन्ती।
2: एबे वर्तमान मार्केट रे चासिंकर हित पाई चासिंको मध्य आमे परचेस मध्य अधिका रेट रे करिवु। वर्तमान अलगा ट्रांसपोर्टेशन तार प्रोसेसिंग ए सबुरो मध्य एबे कॉस्ट बढी छथि पाई आमे गुटिए लीटर पिछा बा पैकेट पिछा 2 टंका लीटर पिछा आमे 4 टंका वृद्धि करछु। जोटा आछि गोल्ड प्रीमियम आपनकर 56 टंका थिला वर्तमान सीता वृद्धि पाइछि 60 टंका लीटर। टोन मिल थिला 50 टंका
1: वर्तमान 54 टंका। भुवनेश्वर विश्व दक्षता केन्द्र चलित वर्ष मार्च मास पाठ्यक्रम नामलेखा पई ऑनलाइन आवेदन समय सीमा वृद्धि करा जायछे। इच्छुक छात्र छात्री एथि पई आसंता 15 तारीख जाय आवेदन करि परिबे। चलित मास 31 तारीख रे पाठ्यक्रम नामलेखा पई ऑनलाइन प्रवेशिका परीक्षा अनुष्ठित हेबो बोली विश्व दक्षता केन्द्र पक्षरु सूचना दिया जायछे। केन्द्रापड़ार आराध्य देव श्री सिद्ध बलदेव जीव मंदिर 22 पहाच उपरे श्रीराम अभिषेक उत्सव अनुष्ठित होइजायछे। मंदिर सम्मुखरे श्रीराम नवमी ठारु मासाधिक काल अनुष्ठित हेउथिबा श्रीराम लीला अभिनय समाप्ति परे परंपरा अनुजाई मंदिर मध्यरे श्रीजीव मानंक सम्मुखरे श्रीरामंक अभिषेक उत्सव दीर्घ वर्ष हेला पालन करा आसुछे। निशामुक्त ओडिशा अभियान रे मालकानगिरि पुलिस को बड़ सफलता मिलिछि। जिलार चित्रकोंडा अंचल रे पुलिस खानतलासी करी एक गंजेई तेल तयारी कारखाना को ठाब करिबा सह विपुल परिमाणर मादक सामग्री और जंत्रपति जबत करिछि। एही अभियान रे 800 लिटर रासायनिक सामग्री सहित 50 किलोग्राम गंजेई और अन्यान्य मादक द्रव्य जबत करा जायछि जहार आनुमानिक मूल्य 100 कोटी टंका हेबो बोली जिला आरक्षी अधीक्षक विनोद पाटिल एच सांबादिक मानंको सूचना। भद्रक जिला आरोडीर प्रसिद्ध बाबा आखंडमणि पीठ से आसंता शिव पार्वती विवाह पर वैदिक रीतिनीति लोकाचार अनुजाई लग्न चिटाउ थाली कार्य अनुष्ठित होइछे।

मेरे घर के सामने फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के युगल स्वर, हसरत जयपुरी के बोल थे, सचिन देव बर्मन का संगीत। और अब अगले गाने में कौन सी बात होगी? कुछ तो जादू था उसकी नजर में, कुछ तो जादू था उसकी नजर में, पहली ही नजर में हम दिल हार बैठे।

अनपढ़ फिल्म का ये यादगार गीत जो आज भी सुनते हैं तो बहुत ही प्यारा लगता है। आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, राजा मेहंदी अली खां के बोल थे मदन मोहन की तर्ज। और अब आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम का समापन हम एक ऐसे गाने से करेंगे जो थोड़ा सा चंचल है। मुकेश का स्वर, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। आइए सुने क्या कहता है ये गीत।

0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आइए सुने कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
0: श्रोताओ नमस्कार, शुभ दोपहर या शुभ नमन। कार्यक्रम शुरू हो मन चाहे गीत, उससे पहले ये छोटा सा संदेश आपके लिए।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपनी हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
1: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतर्देशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है? कार्यक्रम मन चाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
1: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

साथियों, हाजिर हूँ मैं शिफाली कपूर आपके मनपसंद कार्यक्रम मन चाहे गीत के साथ। साथियों, एक लंबे समय के बाद ये कार्यक्रम फिर से शुरू हुआ है। आप सभी के पत्रों का बेसब्री से इंतजार है हमें। वैसे आज है संडे, रविवार यानी छुट्टी का दिन। आप में से कुछ साथी इस समय चाय की चुस्कियां ले रहे होंगे, तो कुछ मंडली में बैठकर बातचीत, तो कुछ साथी पेड़ के नीचे चारपाई डालकर मोबाइल या फिर ट्रांजिस्टर सिरहाने रख के बस इंतजार कर रहे होंगे मन चाहे गीत कार्यक्रम का। क्यों, है ना? तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम मन चाहे गीत, और ये है आज का आपका अपना पहला मनचाहा गाना।

यकीन मानिए मनचाहे गीत कार्यक्रम में भी आपके पत्रों से बहार आ जाती है। बहरहाल आपको बता दें कि आज मनचाहे गीत कार्यक्रम में जो पहली फरमाइश पूरी हुई, हमारे इन साथियों ने फरमाइश भेजी थी और फिल्म के नाम जो है वो था जीने की राह। मोहम्मद रफी की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और पसंद हमारे इन साथियों की। कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनू राज शिवानी। श्रीमाली, तो आपकी फरमाइश पूरी हुई। साथियों, आज है दोबारा शुरू हुए कार्यक्रम मनचाहे गीत का दूसरा दिन, तो फटाफट पोस्टकार्ड पर अपनी पसंद का गीत अपने नाम और पते के साथ भेज दीजिए और इंतजार कीजिए अपने पसंदीदा गीतों के शामिल होने का। बहरहाल अब हम बढ़ेंगे आज के कार्यक्रम में आपकी दूसरी पसंद की ओर, जो है गुनाहों का देवता फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत और पसंद किसकी, हितू रांची से हमारे श्रोता प्रवीण कुमार की।

0: लता मंगेशकर की आवाज में गुनाहों का देवता फिल्म का ये गाना सुना। अगली फरमाइश किसकी होगी, किस गाने के लिए होगी, सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: बतौर बाल कलाकार उन्होंने रंगमंच की दुनिया में रखा था अपना पहला कदम।
2: कभी किसी जगह पे बच्चे का रोल हुआ तो सागर साहब मुझे ले जाते थे उस नाटक में रोल करने के लिए।
1: जिंदगी की राहें उन्हें ले आई फिल्म निर्देशन की दुनिया में। सन 1977 दूसरा आदमी।

0: 1993 फिल्म साहिबा।
1: कैसे जीऊंगा मैं।
0: रंगमंच और सिनेमा के जानी माने निर्देशक रमेश तलवार।
2: नजरों से कह दो प्यार।
0: उजाले उनकी यादों के 3 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: काजल है।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत। साथियों, अभी तक आप सभी के कुछ ही फरमाइशी पत्र हम तक पहुंचे हैं, तो भाई जल्दी जल्दी पत्र लिखिए, हमें भी इंतजार है आपके फरमाइशी खतों का। और हाँ, एक बात और, अपना नाम और पता साफ अक्षरों में लिखें ताकि हम आपका नाम और पसंद आपकी साफ साफ पढ़ सकें। तो चलिए अब बढ़ा जाए आज के इस कार्यक्रम के अगले गाने की ओर। और हमारे किन साथियों की पसंद है सब कुछ बताएंगे, लेकिन पहले ये गाना।

0: वफा करके भी तन्हा रह गए। निकाह फिल्म से आप सुन रहे थे सलमा आगा की आवाज। हसन कमाल ने इसे लिखा था और रवि की तर्ज थी। और पसंद किसकी थी ये भी बता दीजिए। इसे पसंद किया था जिला वाशिम मनोजा तांडा मिथुन से सानिका राठौर, एस आर टेलर, जय राठौर, सुनील राठौर, इंदुबाई राठौर और कुमार आशीष। और इसी गाने को पसंद किया था ककराला बदायूं से डॉक्टर मसरूर खान, मोहम्मद सरफराज खान, अमजद अंसारी और अतीक अंसारी। चलिए एक संदेश और सुन लेते हैं, उसके बाद आज के कार्यक्रम का अगला गाना।
1: छाया गीत हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: मेरे सपने अब
1: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमान में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
1: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

चलिए इस संदेश के बाद बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश की ओर। तो बता दी जाए कि ये पेशकश कौन सी है। पापा कहते हैं, हाँ पापा कहते हैं फिल्म का नाम है। उदित नारायण की आवाज, जावेद अख्तर के बोल, राजेश रोशन का संगीत। और पसंद किसकी? पसंद है हमारे इन श्रोताओं की, गर्ल्स स्कूल रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता, भोलू नीलू, विशाल राज और वंशराज। आप सबकी पसंद पर आपका पसंदीदा ये गाना।

0: कहते हैं फिल्म के इस गाने के साथ ही अब आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम यहीं पूरा होता है। साथियों, एक से बढ़कर एक आपकी फरमाइशें रही। अब आज के लिए शिफाली कपूर को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: मनचाहे गीत।
2: मन चाहेगी।

0: सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग में कल आपने सुना नाटक इंस्पेक्टर जनरल का पहला भाग, आज सुनते हैं दूसरा और आखिरी भाग। ये नाटक गोगोल के प्रसिद्ध नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी रेडियो रूपांतरण है। रूपांतरकार शैलेंद्र, निर्देशक सत्येंद्र शरत, प्रस्तुति विविध भारती की।
1: अरे आप लोग खड़े रह गए, बैठिए ना।
2: राम जी,
1: आप तो सचमुच बहुत ही सज्जन पुरुष हैं। और मैं समझा था कि आप मुझे
2: डॉक्टर, जहां तक मैं सोचता हूँ ये अपने को छिपाए रखना चाहता है। ठीक है, हम भी ये जाहिर नहीं होने देंगे कि हम इसे पहचान गए हैं,
1: लेकिन आप इससे बातें तो कीजिए, अभी तो ये खुलेगा।
2: तुम ठीक कहते हो
3: हुजूर, मैं कुछ कहने की दृष्टि
1: नहीं। आप कहिए कहिए।
3: नहीं, मैं अपने को इसी अज्ञ।
1: अरे आप कहिए तो।
3: देखिए, मेरे मकान में एक बहुत ही साफ सुथरा और हवादार कमरा है, अगर आप वहाँ। देखिए कृपया इस बात का कोई दूसरा मतलब ना निकालिएगा, मेरे मन में तो देखिए
1: क्या बात करते हैं। मैं तो खुशी से ऐसी अच्छी जगह जाने के लिए तैयार।
3: अब आपसे क्या कहूँ, मेहमान नवाजी का तो मुझे बचपन से ही शौक है।
1: मेरा सौभाग्य है कि आपसे मेरी भेंट हो गई। हुजूर ने मुझे याद किया।
4: बिल्ला
1: वो तो मैंने आपको सुबह ही दे दिया था।
4: मेरे पास इन बेकार चीजों को देखने के लिए वक्त नहीं है। ये बताओ कुल कितना बचा?
1: जी आप क्यों खामखा परेशान होते, वेटर तुम जाओ, पैसे हम पहुंचा देंगे।
4: जी बहुत अच्छा।
3: हुजूर आप शहर का मुआयना करना चाहेंगे?
1: मुआयना?
3: जी
1: आपका मतलब?
3: शायद आप ये देखना चाहें कि यहाँ के दफ्तरों और दूसरी संस्थाओं में कैसा काम वाम होता है।
1: आपकी खुश। डॉक्टर की मैं तुम्हें दो पर्चियां लिख देता हूँ, एक अस्पताल में जमलियानिका को दे देना और दूसरे मेरी पत्नी को।
4: जी
3: आप इजाजत दें तो मैं अपनी पत्नी को दो शब्द लिख।
1: जरूर जरूर, पर यहाँ कागज तो होगा नहीं।
4: खैर कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिए कि आप इस बिल के पीछे लिख दीजिए।
3: जी शुक्रिया शुक्रिया। तुम फिक्र ना करना, इंस्पेक्टर साहब को बढ़िया खाना और एक बोतल शराब मिलने की देर है, सब मामला ठीक हो जाएगा। वो मैदीरा की बोतल ठीक रहेगी।
1: डॉक्टर की ये लो, चलिए
4: हजूर। तो मेरा सामान लेकर आ जाना।
1: तुम किसी से भी मेयर साहब का बंगला पूछ सकते हो, समझे ना। आइए हुजूर, आइए।
5: ओह, इंस्पेक्टर जनरल ऊंचे दर्जे के लेखक भी हैं। अच्छा डॉक्टर की उसकी उम्र कितनी होगी? उसकी आंखें काली हैं या भूरी? मारिया तू चुप रह।
6: एकदम गबरू जवान, चेहरा ऐसा रौबदार कि अच्छा खासा आदमी दहशत खा जाए। अरे हाँ, मेयर साहब ने आपके लिए चिट्ठी दी थी।
5: ये ला मुझे तो
6: लीजिए। अच्छा मुझे इजाजत दीजिए, मैं भी देख लूँ अस्पताल का मुआयना कैसा चल रहा है।
5: निष्का निष्का, अरे कहाँ मर गया? मारिया बेटी अब हम जल्दी से तैयार हो जाना चाहिए, वो आने ही वाला होगा।
6: लोग आ गए।
4: जी सचमुच बहुत अच्छी संस्थाएं हैं आपके शहर में, और सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे इस बात से हुई कि आप प्रत्येक यात्री से इन संस्थाओं का निरीक्षण कराते
6: हैं।
4: दूसरे शहरों में तो यात्रियों को अंदर घुसने तक की इजाजत नहीं है।
1: अजी दूसरे शहरों में अफसरों को सिर्फ अपने स्वार्थ की चिंता रहती है, और एक
4: आपने तो खाना भी कमाल का खिलाया।
1: सुनिए,
4: हमने जहाँ खाना खाया वो अस्पताल ही था ना?
1: जी जी हाँ श्रीमान,
4: लेकिन वहाँ तो बहुत सारी चारपाइयाँ खाली थी। मेरा मतलब है मरीज थोड़े ही दिखाई दिए।
1: ये बात ये है श्रीमान कि मैं हरचंद यही कोशिश करता हूँ कि मरीज जल्द से जल्द ठीक हो जाए। विश्वास कीजिए हुजूर, हमारे अस्पताल तक आते आते मरीजों का बुखार उतरना शुरू हो जाता है और फिर हमेशा के लिए उतर जाता है।
4: हुजूर मेयर की जिम्मेदारी के आगे बाकी चीजें कुछ भी नहीं है। दिमाग हर घड़ी शहर के बारे में ही सोचता रहता है, कहीं कोई भूल चूक ना हो जाए। और अपने परिश्रम का पुरस्कार मैं भगवान से यही मांगता हूँ, हे ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं हमेशा इसी तरह अपना कर्तव्य निभाता रहूं।
6: आप ठीक कहते हैं, आत्मा का सुख ही सच्चा सुख है।
4: जी,
6: इसी आत्मिक सुख के लिए

0: कहानियां लिखता हूँ, कविता करता हूँ।
1: देखा डॉपचिंस की है? इंस्पेक्टर जनरल की एक एक बात से पता चलता है कि ये कितना फितवान आदमी है।
0: मेयर साहब
2: जी,
0: आप अपने काम से थक जाते हैं तो अपना मनोरंजन कैसे करते हैं? आपको ताशवाश खेलने का शौक नहीं?
2: वाह बेटा, मेरे पेट में घुसकर सब कुछ मालूम करना चाहता है, लेकिन बच्चों मैं भी हवा नहीं लगने दूंगा। हाँ जी नहीं, मुझे कोई शौक वौक नहीं है, मुझे तो उन लोगों पर तरस आता है जो ऐसी बेकार की चीजों में अपना समय बर्बाद करते हैं।
0: साहब ये तो अपना अपना सोचना है, मैं तो अक्सर ताश की बात लगा लेता हूँ
3: बड़े लोगों के बड़े शौक।
2: अरे इधर इधर, ये मेरी पत्नी है एना और ये मेरी बेटी मारिया।
0: तशरीफ रखिए, इधर बैठिए ना।
4: ये हमारा सौभाग्य है कि इस घर में आपने दर्शन।
0: और मैं कहता हूँ ये मेरा सौभाग्य है कि आज इतनी अच्छी जगह आकर इतने अच्छे लोगों से मिल रहा हूँ।
4: आप पीटर्सबर्ग जैसी जगह से आए हैं, इस छोटे से शहर में तो आपको यूं बहुत बुरा लग रहा है।
0: क्या क्या कहाँ पीटर्सबर्ग की रौनक और कहाँ, लेकिन विश्वास कीजिए इस वक्त तो मैं पीटर्सबर्ग को बिल्कुल भूल गया हूँ, बिल्कुल। अरे आप सब लोग खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं बेकार के शिष्टाचार में विश्वास नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि किसी को ये पता ना चले मैं कौन
2: जी।
0: लेकिन आखिर कोई कहाँ तक छिप सकता है, बताइए। कहीं भी जाता हूँ लोग फौरन पहचान लेते हैं। देखो देखो देखो, इवान अलेक्जेंड्रोविच हेलेस्टकोव जा रहा है। एक बार लोगों ने मुझे कमांडर इन चीफ भी समझ लिया।
4: आप इतने आकर्षक और प्रभावशाली है कि
0: मैं
4: मैंने सुना है आप खुद भी ऊंचे दर्जे के लेखक हैं।
0: ये तो मैं नहीं कह सकता, पर लिखा मैंने बहुत है, बहुत। मुझे तो अपनी सब किताबों के नाम भी याद नहीं।
4: अगर मैं भूलती नहीं हूँ तो ला मिसराब आप ही का लिखा हो। पर मम्मी, ला मिसराब के लेखक तो विक्टर ह्यूगो है। मारिया तू बीच में मत बोला कर।
0: नहीं नहीं, इन्हें डांटिए नहीं। मिस मारिया आप ठीक कहती हैं, बिल्कुल ठीक कहती हैं, लेकिन इस नाम के दो उपन्यास, उनमें से एक मैंने लिखा है। मैडम आप लोग कभी पीटर्सबर्ग आइए ना, स्टेशन पर उतरते ही आपको किसी से भी पता चल जाएगा इवान अलेक्जेंड्रोविच का बंगला किधर है।
4: काश हम जा पाते।
0: मैंने तो बंगले को मेहमानों के लिए ही सजा रखा है। मिसाल के तौर पर ड्राइंग रूम के ठीक बीचों बीच मेज पर क्या रखा है, क्या रखा है? हाँ हाँ हाँ, एक तरबूज रखा है। उसकी कीमत है सिर्फ 700 रूबल। मेहमानों के लिए सूप कहाँ से? पेरिस से बंद डब्बों में मंगाया जाता है। हर रात दरद दरद दरद डांस होता है। दुनिया भर से मेरे नाम चिड़ियां आती और सब पर लिखा होता है योर एक्सीलेंसी वगैरह वगैरह। एक बार जब मैं होम मिनिस्ट्री में था, वहां का डायरेक्टर जनरल कहीं चला गया
2: जी।
0: सब लोगों की नजरें उस खाली कुर्सी पर थी, लेकिन किस्मत देखे सरकार ने मुझे उस कुर्सी पर बिठा दिया। मैं तो जैसे घबरा गया, सोचा मना कर दूं, बिल्कुल मना कर दूं, लेकिन फिर ख्याल आया, वो है ना अपने वो जार सलामत नाराज हो जाएंगे। मैं जानता हूं एक दिन जरूर वो मुझे फील्ड मार्शल बनाकर रहेंगे। मुझे बहुत मानते
2: हुजूर।
0: क्या हुजूर लगा रखी है, क्या कहना है
2: जी? आप आराम करना चाहते हो तो मेरा मतलब
0: आराम
2: जी

0: खैर आराम ही करते हैं, आराम ही करते हैं। साहिबान साहिबान, खाना बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था।
1: मैं कहती हूँ मारिया, इतने विद्वान और सब व्यक्ति किसी जनरल से कम नहीं हो सकता।
2: जरूर होगा मम्मी, और सुंदर भी कितना है। मैं बार बार मेरी ओर देख रहा था, मुझे तो बहुत शर्म आई।
3: क्या मुसीबत है, सुबह सुबह तुम लोगों ने चेचे मचानी शुरू कर दी। कुछ ख्याल है, इंस्पेक्टर जनरल बराबर के कमरे में सो रहे हैं, बराबर के कमरे में। जब से उन्होंने अपने बारे में बताया है, मेरे पांव के नीचे से तो जैसे जमीन खिसक गई हो। जानती हो है ना, शराब के नशे में आदमी दिल के सारे राज खोल देता है।
1: देखो जनरल साहब का नौकर आ रहा है। औसिफ, औसिफ
4: जी।
1: क्या साहब अभी सो रहे हैं?
4: जी हाँ।
3: अच्छा औसिफ, साहब को क्या क्या बातें पसंद है, मेरे मतलब है वो किन किन बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं?
1: औसिफ, तुम्हारे साहब की अभी शादी तो नहीं हुई।
3: ओ, तुम लोगों की बकवास बंद होगी या नहीं, भागो यहाँ से तुम दोनों।
1: हम लोगों को बात करने का मौका नहीं देते।
4: मालिक ज्यादा नखरे नहीं करते।
3: अच्छा।
4: वो बस इतना ही चाहते हैं कि जहाँ जाएं उनका और मेरा अच्छी तरह स्वागत हो।
3: ये तो होना ही चाहिए, ये तो
4: मालिक मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं।
3: ये तो होना भी चाहिए। अच्छा भैया सुनो, रात तुम्हें तो नींद अच्छी तरह आ गई थी?
4: जी हाँ जी हाँ, खूब सोया।
3: अच्छा तुमने चाय वाय भी पी है? खैर एक प्याला गर्म चाय और मंगवाता हूँ। और हाँ सुनो, ये कुछ रूबल तुम अपने पास रख लो, कभी भी जरूरत पड़ सकती है।
4: आपकी बहुत
3: कृपा। भैया तुम तो बहुत ही भले और प्यारे आदमी हो।
4: अच्छा मैं जरा देख रहा हूँ कहीं मालिक जाग ना गए।
3: जरूर जरूर, मैं भी जल्दी से तैयार होकर जाता हूँ।
4: कुछ करवा रहे थे
5: भाई? मेरा ख्याल ये है, ज्यादा अच्छा हो हम लोग लाइन बना लें, इंस्पेक्टर जनरल के सामने भेड़ बकरियों की तरह जाएंगे तो वो हमें गोली मार देंगे।
3: ठीक है ठीक है।
5: स्कूल सुपरिटेंडेंट साहब
3: जी
5: आप इधर आ जाइए
3: जी।
5: हेल्थ अफसर साहब आप इनके पीछे, और पोस्टमास्टर पुलिस पर आ
3: जाओ।
5: और हम
3: हमारा क्या होगा,
5: हमारा क्या होगा? मिस्टर बॉब डॉब, आप क्यों आए हैं? आप सरकारी मुलाजिम थोड़े हैं।
6: जज साहब मेरा एक सुझाव है
3: जी,
6: किसी बहाने से इंस्पेक्टर साहब की जेब गर्म कर दी जाए।
5: अरे भाई यही मैं सोच रहा था, लेकिन वो इतना बड़ा अफसर है, हमारा इरादा समझ गया तो हमें कच्चा ही चबा जाएगा। पर अगर हम ये पैसा भ्रष्टाचार उन्मूलन चंदा कहकर साहब की जेब में डाल दें तो कैसा रहेगा, कहिए?
7: क्यों पूछना उसे साहब? एक बहाना ये भी हो सकता है कि हम कह दें साहब हमारे डाकखाने में इतने रूबल का एक गुमनाम मनी ऑर्डर आया है।
6: सुनिए सुनिए, ये सब तरीके गवारू हैं। सभ्य प्रगतिशील और अनुशासनबद्ध देशों की तरह अच्छा यही है कि हम लोग एक एक करके अंदर जाएं, और क्योंकि इस हालत में ये बात दो आदमियों के बीच ही रहेगी। जज साहब पहले आप जाइए।
5: नहीं नहीं नहीं, मैं पहले तुम जाओ हेल्थ अफसर साहब। सबसे पहले उसने तुम्हारे अस्पताल में अन्न जल ग्रहण किया है।
6: बाप रे, किसी बड़े अफसर को देखते ही मेरी तो टांगे कांपने लगती हैं।
5: तो आप ही जाइए ना जज साहब, आप में भाषण देने की बड़ी क्षमता है।
6: हाँ। ऐसा लगता है जैसे प्लेटो बोल रहा
5: है। हाँ, बिल्कुल जज साहब, जज साहब पहले आप ही जाइए।
3: अच्छा तो मैं ही चलता हूँ
5: जी।
3: कम वक्तों ने कल इतना खिलाया पिलाया कि अभी तक खुमारी चढ़ी हुई, लेकिन औसिफ प्यारे मजा आ गया। दो चार दिन भी यहाँ रह गए तो सेहत बन जाएगी।
6: देखो तो मेरी भी बड़ी खातिरदारी कर रहे हैं, समझ में नहीं आता क्यों। मेयर मुझसे पूछ रहा था कि तुम्हारे साहब को क्या क्या बात ज्यादा पसंद है।
3: ये तुम नहीं समझोगे प्यारे।
6: अच्छा,
3: इन लोगों को मेरे बारे में कुछ गलत फहमी है।
6: अच्छा,
3: कि मैं कोई बहुत बड़ा असर
6: हूँ।
3: तशरीफ लाइए। आसिफ तुम जाओ।
5: मैं जिसका शहर हूँ, माफ कीजिएगा हुजूर, मैं इस शहर का डिस्ट्रिक्ट जज हूँ। लियाकत इम्तियाज़
3: साहब बैठे बैठे, आपसे मिलकर बहुत खुश हुई। सुनाइए आपका काम कैसा चल रहा
5: है? हुजूर ये काम संभालने के 3 महीने बाद ही मेरा काम देखकर सरकार ने मुझे विशेष पुरस्कार प्रदान किया था।
3: अरे मिस्टर लैपकिन टॉपकिन, आपकी जेब से कुछ नीचे गिरा है?
5: नहीं नहीं नहीं हुजूर, भला मुझ जैसे छोटे आदमी की जेब से क्या गिर सकता है।
3: मैं कहता हूँ जरूर कुछ गिरा है।
5: नहीं कुछ नहीं गिरा हुजूर।
3: ये कितने सारे नोट हैं?
5: अरे भाई आप इन्हें बेकार समझते हैं तो हमें ही दे दीजिए।
3: यहाँ दिन हुजूर, ये लीजिए हुजूर, आप ही के तो हैं। तो ऐसा कीजिए कि ये नोट मुझे

0: उधार दे दीजिए, मैं बाद में वापस।
1: बाद में ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा न कीजिए, मैं आपका अमूल समय खराब नहीं करूंगा।
0: हाँ, हाँ, हाँ,
1: मुझे आज्ञा है।
0: और जरूर जरूर जरूर जरूर जरूर जरूर। अच्छा आदमी था ये भी, जज होते ही अच्छे हैं, बेचारा 400 रूबल दे गया।
2: श्रीमान मैं अंदर आने की गुस्ताखी कर सकता
0: हूँ? हाँ जरूर कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, ठीक है।
2: मैं शहर का स्कूल सुपरिंटेंडेंट हूँ।
0: कहीं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आपको एक मजेदार किस्सा सुनाऊं?
2: जी है।
0: यहाँ आते हुए रास्ते में एक जगह
2: जी
0: मैं एक अजीब चक्कर में उलझ गया, और नतीजा ये कि तब से जेब में एक पैसा भी नहीं है
2: जी। हुजूर अगर आप कुछ और ना समझें तो ये थोड़े से रूबल स्वीकार कर लीजिए।
0: ठीक है ठीक है, ये 400 रूबल मेरे ऊपर उधार
2: जी, मेरे लिए ऐसा सुनना भी पाप है। अच्छा मुझे आगे दीजिए। नमस्ते।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते। कौन कौन साहब हैं
2: जी?
0: अरे आप वहाँ खड़े खड़े क्यों कांप रहे हैं, अंदर आ जाइए
2: जी। मेरा नाम जिमलानी का है। कल आपने मेरे अस्पताल को ही अपने दर्शनों से पवित्र किया था।
0: हाँ हाँ हाँ, लेकिन मिस्टर जिमलानी का मेरा ख्याल है आज आप कल से कुछ बड़े लग रहे हैं।
2: हो सकता है हुजूर, हो सकता है, खुशी पाकर ही आदमी बड़ा होता है। विश्वास कीजिए मैं जज, स्कूल सुपरिंटेंडेंट और मेयर की तरह नहीं हूँ, जिनका ना कोई ईमान है ना चरित्र। मुझे यही आश्चर्य है कि ऐसे निकम्मों को सरकार में भर्ती कैसे।
0: अच्छा? मुझे इन बातों का बिल्कुल पता नहीं था। आप देखिए ऐसा कीजिए, एक बार फिर आइएगा और मुझे सारी बातें बताइए।
2: जरूर।
0: देखिए यहाँ आते हुए रास्ते में ना जाने कहाँ मेरा बटुआ गिर गया।
2: अच्छा।
0: अगर आप मुझे 400 रूबल उधार दें।
2: जरूर जरूर, ये लीजिएगा। अच्छा मैं फिर आपके दर्शन करूंगा।
0: अच्छा शुक्रिया शुक्रिया, जरूर कीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा।
3: नमस्कार श्रीमान, मैं पीटर इवानोविच बाबसिंस्की हूँ, इस शहर का एक सच्चा नागरिक और जमींदार। श्रीमान मैं पीटर इवानोविच डॉबचिंस्की हूँ, शहर का दूसरा सभ्य नागरिक और जमींदार।
2: जमींदार?
0: आप दोनों से मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। सुनिए आपके पास कुछ पैसे होंगे? अगर आप मुझे 1000 रूबल उधार दे सके तो।
3: विश्वास कीजिए मैं घर से इतना पैसा लेकर चला ही नहीं।
0: क्षमा कीजिए मैं तो घर से ही नहीं आया हूँ। कोई बात नहीं, मैं 1000 की जगह 100 रूबल से भी काम चला सकता हूँ।
3: डॉबचिंस्की तुम्हारे पास 100 रूबल तो होंगे ही, मेरे पास तो कुल जमा 40 है।
4: मेरे पास भी 25 रूबल ही निकले हैं।
3: ध्यान से देखो तुम्हारी बाई जेब उभरी हुई है, कुछ रूबल अस्था में ना तो।
0: अरे अरे आप लोग परेशान ना होइए, लाइए 65 ही दे दीजिए। हाँ आप लोग यहाँ किसी काम जाए?
3: जी हाँ श्रीमान, पीटर्सबर्ग में जिन बड़े बड़े अधिकारियों से आपका मिलना जुलना हो उनसे बस इतना अवश्य कह दें कि आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं,
4: और इस शहर के पीटर इवानोविच डॉबचिंस्की को भी अच्छी तरह से जानते हैं।
0: इसमें क्या है, मैं जरूर कह दूंगा, दो तीन बार कह दूंगा, कई बार कह दूंगा।
2: कितने गधे हैं ये लोग,
0: मुझे पीटर्सबर्ग का इंस्पेक्टर जनरल समझ लिया। मैंने भी रात नशे में ना जाने कहां कहां की हाकी होगी। क्यों ना ये सारी घटना अपने लेखक मित्र ट्रिपिचकिन को लिख भेजूं, वो इस जोरदार मामले पर फटाफट कोई कहानी या फिर ड्रामा लिख डालेगा। अभी उसे चिट्ठी लिखता हूं। प्रिय मित्र ट्रिपिचकिन, तेरी नई रचना के लिए एक मनोरंजक सच्ची घटना भेज रहा हूं।
5: मालिक मालिक, शहर के कुछ व्यापारी आपके दर्शन करने और मेयर के शिकायत करने आए।
0: उन लोगों से कह दो फिर किसी वक्त आए, अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ। हाँ हाँ, वो मुझे कुछ देने के लिए लाए हो तो लेना मत भूलना।
5: बहुत अच्छा मालिक।
0: अरे सुनाओ से
5: जी,
0: तुम एक घोड़ा गाड़ी तैयार करा दो।
5: बहुत अच्छा।
0: कह देना साहब को सरकारी काम से कहीं जाना है। अच्छा अच्छा, जरा रुको जरा रुको, ये चिट्ठी भी डाक में डाल देना।
5: बहुत अच्छा।
0: बाकी मिलने पर तुम्हारा हेलस्त को मिस्टर वेसेलविच ट्रिपिचकिन, पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट, सेंट पीटर्सबर्ग। ये लो
5: लाइए। शुरू।
0: इन दो दिनों में अच्छी खासी कमाई हो गई। आइए आइए, वो आए हमारे कमरे में, हमारी किस्मत। मिस मारिया मैं आपकी ही राह देख रहा था।
6: शायद आप किसी जरूरी काम में व्यस्त थे।

0: मैंने आके
1: मेरे लिए आपसे बड़ा क्या काम हो सकता है मिस मारिया। ओहो, आप शर्माती हैं तो मैं जैसे अपनी सुध-बुध भूल जाता हूँ।
0: सुनिए, क्या आप मेरी नोटबुक में कुछ कविताएं लिख सकेंगे?
1: क्यों नहीं, काश काश कविताओं की जगह मैं अपना प्यार लिख सकता।
0: प्यार? वो क्या होता है?
1: ये भी जान जाएंगी मेरे मेरे नजदीक आइए।
0: हम सीधे सादे आदमी हैं, इसी से आप हमारा मजाक उड़ाना चाहते हैं। मुझे जाने दीजिए।
2: मारिया, तू यहाँ? ये क्या बदतमीजी है?
1: मेरी सहायता कीजिए मैडम, मैं अब मारिया के बिना नहीं रह सकता। मैं इन्हें जीवन संगीनी बनाना चाहता हूँ।
0: ओह, सुन लिया मारिया, तेरी जाति और बेवकूफी के बावजूद आदरणीय मेहमान तुझसे विवाह करना चाहते हैं। मैं अपनी गलती के लिए क्षमा चाहती हूँ।
1: मैडम, हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए।
3: हुजूर, हुजूर, हुजूर, मेरे ऊपर दया कीजिए। शहर के व्यापारियों ने जो मेरे खिलाफ शिकायतें की हैं, उनमें से एक भी सच नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।
0: ओहो, इस वक्त ये बातें बंद कीजिए ना। जानते हैं, साथ में हमारी मारिया का हाथ मांगा है।
1: हुजूर कहीं की? हुजूर, आप मेरी पत्नी की बात पर बिल्कुल ध्यान ना दीजिएगा। ये तो शुरू से ही मूड मती रही
4: है। पर ये सच कह रही है।
1: मैं मारिया से विवाह करना चाहता हूँ। हुजूर, इस नाचीज से मजाक कर रहे हैं।
4: मेरी बात पर विश्वास कीजिए।
3: मेरी बेटी की शादी इंस्पेक्टर जनरल से। इंस्पेक्टर जनरल से? ओ
1: एंटन एंटोनोविच, आज से तेरी दुनिया ही बदल गई।
5: हुजूर, गाड़ी तैयार।
1: हम अभी आते हैं। क्या हुजूर यहाँ से विदा हो रहे हैं?
4: हाँ हाँ, एक दिन के लिए घर जाना चाहता हूँ। मेरे चाचा बीमार हैं, बस परसों तक वापस आ जाऊंगा।
1: ठीक है ठीक है। मेरा ख्याल है हुजूर, इस वक्त आपके पास पैसे कम हो?
4: नहीं नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं आप।
1: तो सेवा में कितना पेश कर दूं?
4: आप मुझे 200, मेरा मतलब है 400 रूबल दे दीजिए।
1: ये लीजिए, एकदम नए नोट है।
4: नए नोट, नई आशा। अच्छा, मैं चलता हूँ।
0: मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी।
4: प्रतीक्षा करने में बहुत आनंद आता है मिस मारिया।
1: आपकी यात्रा के लिए हमारी शुभकामनाएं।
4: शुक्रिया शुक्रिया।
1: है ना, तुमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अचानक एक दिन हमारी किस्मत के सितारे जगमगा उठेंगे। कल तक तुम एक मामूली मेयर की बीवी थी, लेकिन आज तुम ऐसे आदमी की सास हो जिसके आगे बड़े बड़े अफसर सिर झुकाते हैं।
0: सुनिए जी, अब हम लोग इस छोटे से शहर में नहीं रहेंगे। यहाँ तो अभी से मेरा दम घुटने लगा है।
1: यहाँ रह कैसे सकते हैं? शादी के बाद इंस्पेक्टर जनरल हमें फौरन पीटर्सबर्ग ले जाएंगे। है ना, मुझे लगता है अब मैं ज्यादा दिन मेयर नहीं रहूंगा।
0: छी छी छी, आप जैसे आदमी के लिए मेयर बनना डूब मरने की बात है। देखना, आप जल्दी ही जनरल या कोई दूसरे बड़े अफसर बन जाएंगे।
5: और फिर देखना, मैं शहर के इन बदमाश व्यापारियों की कैसी मट्टी पलीत करता हूँ।
1: बेईमान कहीं के, मेरी शिकायत करने आए थे।
0: छोड़िए जी, हमें इन कबूतरों के मुंह नहीं लगना
5: है। बिल्कुल
0: है? अब आप अपना तौर तरीका बदलिए। इन घटिया लोगों के साथ बैठना उठना छोड़िए। काउंट, लॉर्ड वगैरह, बड़े बड़े आदमियों में बैठना उठना है।
5: ओ आओ भाई, बाबा डॉक।
3: मेयर साहब, आपको और मैडम ऐना को बाब चिंस्की की ओर से बहुत बहुत बधाई। और डॉक की ओर से भी बहुत बहुत बधाई।
1: शुक्रिया शुक्रिया। ओहो, आइए आइए मिस्टर स्कूल सुपरिटेंडेंट।
6: मुबारक हो, मुबारक हो मेरा था, मुबारक हो। मिस्टर जाना, मेरी पत्नी भी आपको बधाई देने आई है। भाई मेरी भी हार्दिक बधाई है। मैं
0: लेकिन ये बात बनी कैसे?
1: इसमें आश्चर्य की क्या बात है लैपकिन कैप्टन? अफसर पहली भेंट से ही मुझसे बड़ा खुश था। उसने मुझसे मारिया का हाथ मांगा,
0: लेकिन बहुत ही तहजीब से मुझसे कहने लगा, मैं तो आपके गुणों पर मुक्त हो गया। मम्मी, ये तो उन्होंने मुझसे कहा था। मारिया, बीच में नहीं बोला करते। फिर कहने लगा, अगर आपको मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है तो मैं इस जीवन से मृत्यु ही अच्छी समझ। ओ मम्मी, ये भी उन्होंने मेरे लिए कहा था। हाँ हाँ, मैं कब कहती हूँ कि मेरे लिए कहा था।
1: मित्रों, अब मैं आपका साथ छोड़कर पीटर्सबर्ग चला जाऊंगा। शायद वहां मुझे जनरल बना दिया जाए।
7: अवश्य जाइए, अवश्य जाइए। बड़ा जहाज गहरे पानी में चलता हुआ ही छोड़ा देता है।
6: आखिर भगवान ने हमारी सुन ही ली।
8: कई परिश्रम और ईमानदारी का फल कभी न कभी मिलता ही है।
7: जरूर, इस गरीब को भूल न जाइएगा, मुझे आप ही का सहारा है।
8: कोई अच्छा मौका हो हुजूर तो इस नाचीज हेल्थ ऑफिसर को भी याद कर लीजिएगा।
1: जरूर जरूर जरूर जरूर जरूर।
0: ओफो,

0: आपकी ये आदत मुझे बहुत बुरी लगती है। अभी से दुनिया भर से वादे करने लग गए हैं, बता नहीं पीटर्सबर्ग में आपको इन छोटी छोटी बातों के लिए फुर्सत मिलती भी है या नहीं।
1: अंधेर हो,
2: क्या बात हो गई?
3: अभी अभी अभी अभी डाक भेजने की तैयारी कर रहा था तो उस अफसर द्वारा लिखी चिट्ठी पर मेरी नजर पड़ी।
2: अच्छा,
3: लिफाफे पर लिखा था मिस्टर टिपिचकिन पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट सेंट पीटर्सबर्ग। पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट पढ़कर मेरे तो छक्के छूट गए। मैंने सोचा हो ना हो जरूर बड़े पोस्ट ऑफिस को मेरी शिकायत भेजी जा रही है। मैंने उसे खोलने का इरादा किया।
2: सर, तुम्हारी ये मजाल, इतने बड़े अफसर की चिट्ठी तुम।

0: सेंट पीटर्सबर्ग पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट पढ़कर मेरे तो छक्के छूट गए। मैंने सोचा हो ना हो जरूर बड़े पोस्ट ऑफिस को मेरी शिकायत भेजी जा रही है। मैंने उसे खोलने का इरादा किया।
1: सर तुम्हारी ये मजाल, इतने बड़े अफसर की चिट्ठी तुमने।
0: पूरी बात तो सुनिए साहब।
1: क्या है?
0: पहले तो मैंने लिफाफे को ऐसे ही थैले में डाल दिया, लेकिन जैसे जैसे मेरे दिल से बार बार आवाज आने लगी, लिफाफा खोल ले, लिफाफा खोल ले, नहीं खोलेगा तो बर्बाद हो जाएगा। आखिर धड़कते दिल और कांपते हाथों से मैंने लिफाफा खोल ही
1: दिया। इंस्पेक्टर जनरल की चिट्ठी खोलने की जरूरत?
2: हाँ मेरे साथ ठीक है,
0: लेकिन चिट्ठी पढ़कर मालूम हुआ कि वो इंस्पेक्टर जनरल नहीं था।
1: क्या बकते हो तुम?
0: मैं सच कह रहा हूँ मेयर साहब, आप कहें तो वो चिट्ठी पढ़कर सुना दूँ। सुनिए सुनिए सुनिए, प्रिय मित्र टिपिचकिन, तेरी नई रचना के लिए एक मनोरंजक सच्ची घटना भेज रहा हूँ। ये मेरी बहादुरी का नया किस्सा है।
1: अरे
0: खाली जेब होने पर भी मैं किसी तरह इस शहर में पहुंच गया। होटल का मालिक मुझसे तंग आकर मुझे जेल भेजने की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक मेरा भाग्य जाग उठा। यहाँ के भोंदू अधिकारियों ने मेरी कीमती वेशभूषा और रौब दाब देखकर मुझे इंस्पेक्टर जनरल समझ लिया, और नतीजा ये कि अब मैं ठाट से मेयर की कोठी आबाद कर रहा हूँ और लोगों से पैसा समेट रहा हूँ। आगे सुनिए, आगे सुनिए, आगे लिखा है, तुम भी यहाँ के कार्टूनों से मिल लो। एक तो मेयर साहब है, एकदम गधे जैसा दिमाग, शक्ल उल्लू जैसा है।
1: ये कहीं नहीं लिखा, तुम अपनी तरफ से पढ़ रहे हो।
0: यहाँ का हेल्थ ऑफिसर बिल्कुल सर्कस का जोकर है। स्कूल सुपरिंटेंडेंट के सारे शरीर से हींग की बदबू आ रही है।
3: क्या बदबू है ये?
0: एक जज है, वो अव्वल दर्जे का ऊंचा लगता है।
1: क्या कहा?
0: और यहाँ के पोस्ट मास्टर भी हम साहेबान, मेरा ख्याल है आगे पढ़ना
2: पड़ेगा। पढ़िए पढ़िए,
4: यहाँ एक पोस्ट मास्टर भी है जो सख्त बेईमान है और तुम्हारे चपरासी की तरह घड़िया शराब पीता है। खैर कुल मिलाकर ये लोग,
1: बंद करो ये बकवास।
5: मैं तो कहीं कहा नहीं रहा, वो बदमाश सारी जगह मेरी बेवकूफी की कहानी सुनाएगा, सारी दुनिया मुझ पर हंसेगी। मेरी अकल पर तो पर्दा पड़ गया था, लेकिन तुम लोगों को किस मक्खी ने काटा था जो इंस्पेक्टर आ गया, इंस्पेक्टर आ गया कि नारे लगा बैठे? बताओ
4: मेयर साहब, सबसे पहले बाब और डाब ने ही ये गप उड़ाई थी।
1: जी हाँ, ये बाब और डाब की ही गप है।
5: नहीं नहीं, भला मैं ऐसी झूठी बात कैसे कहता?
1: भगवान का नाम लीजिए, मेरी इतनी जरूरत हो सकती?
2: तुम दोनों ठग इसी वक्त मेरी आंखों से दूर हो जाओ। यहाँ से
1: कम वक्तों ने मुझे चौपट करके रख दिया। मैं कहता हूं चले जाओ यहां से।
5: हे भगवान, हे भगवान, अब मेरा क्या होगा?
1: है? कौन?
6: मेयर साहब हाजिर हैं।
1: क्या बात है, तुम कौन हो?
6: सरकारी हरकारा।
1: सरकारी हरकारा?
6: पीटर्सबर्ग से इंस्पेक्टर जनरल साहब अभी अभी यहां पधारे हैं, होटल में रुके हैं।
1: अच्छा,
6: उन्होंने आज्ञा दी है कि आप और दूसरे सभी अफसर फौरन उनके सामने हाजिर हो जाएं।
1: क्या?
0: इंस्पेक्टर जनरल?

ये था नाटक इंस्पेक्टर जनरल, दूसरा और आखिरी भाग। ये नाटक गोगोल के प्रसिद्ध नाटक का हिंदी रेडियो रूपांतरण था। रूपांतरकार शैलेंद्र, भाग लेने वाले कलाकारों के नाम ब्रजेंद्र मोहन, किशोर कपूर, बलदेव राम नागर, तिलक राज मेहता, जफर अहमद, आर एच चिश्ती, कमला कुमारी चोपड़ा, वीता नवल सिंह, शमशेर सिंह ठाकुर, कुलभूषण खरबंदा, बी एल टंडन, बी आर एल सक्सेना, करतार सिंह पवार और यतीन्द्र श्रीवास्तव। निर्देशक थे सत्येंद्र शरत और ये प्रस्तुति थी विविध भारती की। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की, एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977, दूसरा आदमी।

0: 1984 दुनिया
1: तू चांद नगर की शहजादी मैं जिस धरती का बंजा
0: 1985 जमाना
2: एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए
0: क्या 1993

0: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज सुनिए दूसरा भाग। पिछले एपिसोड में आपने सुना
1: अमदर में कहीं और दूसरी जगह मिनिस्ट्री में भी कोई होता है इस किस्म का इतने खेला जो जिसने अमजद को मेरे वतन के लोगों नाम से प्ले खेला था अमजद खान ने उसको वहां ट्रॉफी मिली थी। तो कादर खान ने फिर कहा यार रमेश तुम हमेशा ट्रॉफी ले जाते हो। मैंने कहा भाई मैं क्या स्क्रिप्ट अच्छी होती है ये होता है होता है। तो मैंने कहानी पढ़ी थी कृष्णचंद्र की जामुन का पेड़। मैंने कहा यार इसमें बड़ा अच्छा प्ले बन सकता है। तो सागर साहब और कादर खान दोनों साथ में खड़े थे
2: जी।
1: तो कादर खान हमारे प्ले में मैं आग होता हूँ मैं मेन रोल करता था। मैं कॉमेडियन का रोल करता था मेन हीरो का रोल करता था।
2: अच्छा
1: तो वही हम खड़े थे चर्च गेट में जेल हॉल के बाहर और मैंने कहा यार ये देखो बड़ा अच्छा यार मुझे लो मैं लिख के दूंगा। मैंने कहा ले लो। जब उन्हें प्ले लिखा तो मैंने कहा भाई वो प्ले दो यार कंपटीशन नजदीक आ रहा है। रमेश प्ले बहुत अच्छा बन गया तुम साले हर बार ट्रॉफी जीतते हो उस बार मैं ट्रॉफी जीता।
2: हाईजेक हो गया प्ले।
1: हाँ तो वो प्ले ले लिया उसने।
2: हाँ
1: अब मैंने दूसरा मैंने तीन मंजर प्ले खेला
2: जी।
1: तो जिसमें मेरे एक्टर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला लेकिन ट्रॉफी कादर खान को मिली।
2: इस बार वो ले गए
1: लास्ट। और इसी साल जो है फिर झगड़े हुए मारामारी खून खराबा हुआ तो मुंशी जी की वाइफ वाइन स्टेज पे के एम मुंशी की वाइफ
2: जी
1: भारतीय विधान की मालकिन उन्होंने कहा भाई बस लास्ट ईयर है आइंदा यहाँ कंपटीशन नहीं होगा। वो 13-14 साल से 52 से कंपटीशन चलता आ रहा था या 50 से चलता आ रहा था और ये ईयर था 68 या 69 वो कंपटीशन बंद कर दिया 68 में।
2: बाद में फिर शुरू हुआ
1: फिर उधर बहुत बाद में किया अभी किया
2: जी।
1: फिर वो किस्सा मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि फिर क्या हुआ कि मैं जब इप्टा में काम करना शुरू हो गया कि ये हुआ कि आखिरी शो अपने हो रहा था जो मैं जिक्र कर चुका था आपसे
2: जी
1: कि ये प्ले था यादगार मुशायरा दिल्ली का यादगार मुशायरा।
2: तब तक आप आखिरी क्या थी?
1: अब मैं कॉलेज में पढ़ चुका था समझिए 23 साल
2: और ये जो टीनेज रोल और बच्चों के रोल
1: वो तो बंद हो चुके थे बहुत पहले पुरानी बात होगी। तो अब ये जो इनके साथ 68 में मैंने कुछ एक दो प्ले पंजाबी में किए जो मैं हिंदी में

0: काफी ले चुका था मनमोहन कृष्ण जी के साथ, अक्षला सिद्धदेव के साथ, इनके साथ वो किए, और पंजाबी में वो पाशी शतरंज के मोरे को पंजाबी शतरंज दे मोरे के नाम से खेला
1: जी।
0: और बी आर चोपड़ा और यश चोपड़ा देखने आए थे, और बी आर चोपड़ा ने बहुत हंसते रहे, यश चोपड़ा फर्स्ट रो में बैठे थे, बहुत हंसते थे, और प्ले खत्म होते उन्होंने कहा बेटा तुम आ जाओ, बीर चोपड़ा साहब ने कहा मुझसे मिलने आप, मैं मनमोहन जी के साथ मिले ऑफिस चला गया, बोले तुम पंजाबी पिक्चर मेरे लिए डायरेक्ट करो। उन्होंने पंजाबी में प्ले देखा सर, मैंने कहा साहब मुझे तो ग्रामर आती ही नहीं फिल्म की, तो मुझे आप असिस्टेंट रख लीजिए, मैं ग्रामर सीख लूंगा फिर करूंगा आपके लिए। तो बेटा अभी तो कोई पिक्चर चल नहीं रही हमारी, जब कोई अनाउंस होगी तुम आ जाना। तो मैंने पढ़ा कुछ दिनों के बाद कि इत्तेफाक एक फिल्म बनेगी, एक महीने में कंप्लीट हो जाएगी, और राजेश खन्ना उसका हीरो होगा। राजेश खन्ना तो मेरा स्टेज का दोस्त
1: बिल्कुल।
0: तो मैं मनमोहन जी से फिर कहा, मनमोहन कृष्ण साहब से कि वहां चलते हैं, ये पिक्चर है और मुझे असिस्टेंट रख लेंगे, एक महीने में सारी एक पिक्चर सामने से गुजरेगी आंख से, तो मैं काफी चला दे पिक्चर। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो, गए तो बी आर चोपड़ा सर ने कहा हाँ भाई आ जाओ आ जाओ, रमेश बैठो, मनमोहन जी यश को बुलाओ भाई, यश जी आए भाई, इसको असिस्टेंट रखो यश अपनी पिक्चर में, भाई साहब मेरे पास ऑलरेडी चार असिस्टेंट है, अगली बार बुलाइए जब अगली पिक्चर शुरू करेंगे। तो फिर बी आर चोपड़ा ने कहा पांचवा असिस्टेंट बना लीजिए, बैठा रहेगा कोने में देखेगा सब
1: जी।
0: तो यश जी मान गए बड़े भाई की बात। नेक्स्ट डे मैंने जाके गुजराती में प्ले देखा डुमस, संडे था, संडे इनका प्ले होता है जैन कॉलेज में, और अरविंद जोशी रोल कर रहे थे, और उसमें उनका बेटा जो आज जीरो है, तो उसमें अरविंद जोशी मेन रोल भी कर रहे थे, डायरेक्ट प्रवीण जोशी ने किया था शायद। और अरविंद जोशी कौन है, ये शर्मन जोशी के फादर,
1: हाँ हाँ।
0: शर्मन जोशी जो अभी हीरो है इनके फादर। तो वो प्ले मैंने सारा गुजराती में देख लिया, मुंबई में रहते थे गुजराती सब समझ आते, गुजराती दोस्त थे, अमृत पटेल मेरा दोस्त था गुजराती का, मेरे नाटकों में उनके साथ काम भी करता था, हिंदी में मेरे साथ खालसा में काम करता था। मैं आया सेट पे, वहां कोने में स्क्रिप्ट पड़ी थी हिंदी की, कॉपी लेके पढ़ डाली कोने में, अभी लाइटिंग वाइटिंग चल रही है, एक सेट था बंगले का, उसमें पूरी पिक्चर उस बंगले में ही है, वो पढ़ डाली। अब मैं एकदम क्लियर कट, मैं ड्रामे का डायरेक्टर हूँ,
1: यस,
0: मैं सिनेमा, मैंने हर फिल्म अच्छी फिल्म देखी हुई है पांच आने में, फ्रंट रो में बैठ के आकाश कुरला पे जाके, कोलीवाला से आकाश कुरला एक आने का टिकट, वहां जाता पांच आने की पिक्चर, एक आने का खाना और एक आना वापस आना, ठंडी में
1: काम बन जाता था,
0: काम बन जाता।
1: कौन कौन सी फिल्में देखी
0: सब, कोई भी आप अच्छी पिक्चर का नाम लो मैंने देखी है, बिमल राय की सारी फिल्में, सत्यजीत रे की सारी फिल्में, गुरुदत्त की सारी फिल्में, बी आर चोपड़ा की सारी, विश्वनाथन की सारी, सारी फिल्में जो अच्छी फिल्में कहलाती थी वो सारी फिल्में में छोड़ता नहीं था। पहले दिन जाता था, लाइन लगाता था पांच आने में, वहां पे आगे कई बार ब्लैक वाले उठा के पीछे फेंक भी देते थे, छोटा सा दिखता था उठा के पीछे कर देते थे, जो मैं पहला नंबर था तो 25वां नंबर हो जाता था, लेकिन टिकट मिल जाता था। तो वो पांच आने का लेके बैठता था, देखा करता था।

0: बन चुका था तब तक, बहुत सी बातें मतलब इस सेट पे जब मैंने सब देख लिया तो पांच चार राइटर वहां थे, अख्तर मिर्जा, अख्तर उलेमान, सीजे पावरी, ये सब वहां पे थे। बी आर चोपड़ा जी भी सेट पे कई बार आते थे, बी आर चोपड़ा जी खुद थे, तो ये सेट में सब रहते इनको एक महीने की पूछे कुछ गड़बड़ ना हो जाए।
1: हाँ,
0: देख लो कोई लास्ट मोमेंट कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो सबकी ड्यूटी थी कि आप सुबह टाइम पे आ जाओ 9:30 और शाम तक 8 बजे तक चलती है छुट्टी, रहो सब। अब साहब वो चलते हुए एक आध बार ऐसी चीज आई, रुक गई शूटिंग, सब राइटर डिस्कस कर रहे थे, कुछ पॉइंट पूछा गया घाट का हुआ है, तो मैं भी अपना क्योंकि मैं धूमत भी देखा ये भी देखा और वो क्या कह रहे हैं, प्रॉब्लम क्या समझ रहे हैं, ये क्यों नहीं हो ऐसे क्यों, उनकी क्वेश्चन जो थे उसका आंसर मैं सोचता जा रहा हूँ और मैंने कहा ये क्यों ना कर लें। अचानक बी आर चोपड़ा साहब ने मुझे डांट दिया, कब कल का बच्चा, मैं कोने में चला गया, मतलब मैंने कोई गलत बात कर दी, बड़े बड़े राइटर आप डिस्कस कर रहे हैं बीच में अपनी होशियारी दिखा रहा हूँ, ये उनके हिसाब से था, कोने में बैठ गया मैं। जब सब डिस्कशन हो गई बात बनी नहीं उनकी, फिर उन्होंने कहा यहाँ किसी ने कुछ बोला था, मैंने स्कूल के बच्चे की तरह हाथ ऊपर किया सर नीचे ही रखा और उन्होंने कहा हाँ बोलो, तो मैंने कहा ऐसा कर ले तू कुछ जो भी छोटी मोटी, तो सब राइटर ने बोला हाँ ये तो बिल्कुल सिंपल है, तो बिल्कुल आसान है, ये जाएगा इफ्तिखार करेगा करेक्ट है। अब साहब वो चीज की गई, अब मेरी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस जगह पे यश चोपड़ा ने नोट किया, उन्होंने प्लेन भी देखा था शतरंज मोड़े, यहाँ ये नोट कर लिया इसको डबल से पांच बार से जोड़ कर कोने में बैठा साहब आगे चले, फिर एक जगह और रुक के कहीं इसी तरह डिस्कशन हुई, मैं भी अपने उस तरह सोचने लग गया, जब ये सब बोलते रहे इनका मैं जल्दी कंप्यूटर दिमाग की तरह राइटर बड़े क्या कह रहे हैं इसमें से चीज निकालूंगा, करते करते करते करते मेरी चीज मुझे समझ आई, कुछ समझ आई, तो मैंने फिर चुपचाप बोला नहीं शोर नहीं किया हाथ ऊपर किया, तो चोपड़ा साहब ने कहा बोलो बेटे, मैंने कहा ऐसा कर रहे तुम, सारे राइटरों ने कहा बहुत अच्छे बेटा वाह
1: वाह
0: यही चाहिए था,
1: क्या बात है,
0: और वो सब सीनियर राइटरों ने अप्रूव किया, ओके होगी चीज। अब साहब लास्ट डे जब था तो सुबह से हम लोगों ने काम शुरू किया, सेट टूटना था नेक्स्ट डे, और एंड में लोग सब थक के सो गए, कुछ शॉट जजी ने लिखवा दिए थे ये शॉट भी लेने विदाउट आर्टिस्ट है। उस वक्त मैं और ऑपरेटिव कैमरामैन रोमेश भल्ला जी थे,
1: जी जी
0: हम दो रह गए थे, बाकी सब सो चुके थे, मतलब फुल 24 घंटे काम कर चुके थे ना।
1: हाँ।
0: लेकिन हम तो अभी अलर्ट थे
1: जी,
0: हम तो अभी बच्चे थे जोश वाले, तो हमने वो शॉट जैसी के पेपर लिया।
1: हाँ।
0: और वो शॉट ले लिए।

0: बाबा।
1: तो जैसे की अचानक आंख खुली तो उन्होंने कहा ये वो यार वो शॉट ले लो, तो ये जी हमने लिए आप देख लीजिए, पर वो उस वक्त तो देख नहीं सकते। उन्होंने कहा जी जैसा आपने लिखा वैसा लिया, ऐसा घुमाया कैमरा, गोल गोल कैमरा घूमता सेट के ऊपर, तो नीचे लोग सोए थे इसलिए उनको थोड़ा ऊपर रखना पड़ा, ये बताया उनको कैसा किया, और ये भी ले लिया वो चीज, उसका क्लोजअप भी ले लिया, उसका भी दरवाजे का जो आपने कहा वो ले लिया, ये ले लिया, सब ले लिया। और रमेश वाला पुराना आदमी था उनका ऑपरेटिव कैमरा, उनको भरोसा था कि ये झूठ नहीं बोल रहे होंगे, और वो जो कुछ जो बातें उन्होंने बोली भी थी उनको मेरी समझ में थोड़ा सा यकीन भी हो चुका था। अलबत्ता वो सेट टूट गया नेक्स्ट डे, उन्होंने चीज देखी वो पिक्चर में लगे हुए भी है वो वाले शॉट लगे हुए। अब साहब वो पिक्चर कम्प्लीट हो गई एक महीने की, अब मैं खाली हो गया, अब उनकी कोई और पिक्चर चल नहीं रही, और मैं चला गया अपना, अपने आप को समझने लग गया था कि अभी है नहीं, मैं कोई और काम में, तो कोई और काम करने लग गया, कोई एक जगह जिसके यहाँ कुछ छोटी पिक्चर बन रही है उसके साथ दो चार दिन काम कर लिया, एक और पिक्चर बाहर वाला कोई आया था उसने कहा मैं फॉरेन में पिक्चर बनाना चाहता हूँ ये सीखी पढ़ने के लिए, तो वो कर रहे थे। तो इसमें मैसेज आया यश जी का, यश जी का मैसेज ऐसा आया कि मैं गया था, मेरा एक प्ले ओपन हो रहा था तन्हाई, जिसमें शौकत कैफी रोल कर रही थी मेन फिल्म एक्ट्रेस, रिटायर्ड फिल्म एक्ट्रेस का,
0: शबाना आजमी की माँ,
1: हाँ, और उसमें भरत कपूर उनका बेटे का रोल कर रहा था
0: जी।
1: तो मैंने कहा कि आप प्ले देखने आई, तो वहां शशि कपूर शूटिंग नीचे कर रहे थे, उनके पास एक यार मुझे पता है थिएटर के बहुत वो है, तो मैंने कहा शशि जी ऐसा प्ले है मेरा आप देखने आइए, तो कहना बेटा मैं पहले शो पे कभी आता नहीं हूँ, चार पांच शो के बाद आता हूँ, बोला आज देख लीजिए फिर पांच फिर देख लीजिए गलतियां ही पता चल जाएंगी हमको समथिंग लाइक दैट। तो अलबत्ता वो भी आ गए देखने प्ले, तेजपाल हॉल में खेला
0: जी।
1: तो प्ले देखने के बाद यश जी ने बोला बेटा तुम कल रात को मैं स्टूडियो आ जाओ, फिर आजकल से कहा मैं भाई साहब से अलग होके कंपनी अपनी खोल रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो आजकल? मैंने कहा ऐसे फॉरन का एक आदमी आया वो चाहता है कि फिल्म बनाऊं यहाँ पे, नहीं बेटा तुम आओ मेरे पास। तो नेक्स्ट डे में आया, इन्होंने अपनी यशराज फिल्म शुरू करनी थी, वहां पे उन्होंने बताया कि ऐसे पिक्चर बना रहा हूँ, मैं तीन पिक्चर बनाऊंगा, एक में ये मेरा चीफ असिस्टेंट होगा फलाना आदमी, फिर दूसरा बताया ये असिस्टेंट है मेरा, ये दूसरी पिक्चर में जो प्राण मेरा डायरेक्ट करेंगे उसमें ये चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर होगा, और एक पिक्चर मनमोहन कृष्ण डायरेक्ट करेंगे जिसमें तुम चीफ असिस्टेंट होंगे।
0: ओके,
1: तो मैंने कहा मैं असिस्टेंट बनना चाहता हूँ, मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, तो चीफ असिस्टेंट बनने से मेरा कोई नहीं, मुझे आप थर्ड असिस्टेंट रख लीजिए पांचवा रख लीजिए मैं आऊंगा। तो मैं उनको फॉरेन वाले को मना कर दिया कि साहब मैं इनकी रेडवर कंपनी शुरू हो रही है तो मुझे नौकरी मिल रही है मैं जा रहा हूँ।

0: तो जैसी तप यहाँ पे पालील पे रहने आ गए थे
1: जी,
0: तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसे इतने पैसे मिलेंगे तुम्हें उसके लिए असिस्टेंटी के लिए। तो मैंने हल्का सा, मैं बीच में थोड़ी देर मैंने बताया आपको सच्चे वाले में नौकरी की, जब मैं प्ले डायरेक्ट करता था ना शफी नामदार फारूक शेख वगैरह, तो सच्चे वाले में नौकरी भी करता था, वो टेम्परेरी जॉब था
1: जी।
0: तो वो 15 महीने मिला, 3-3 महीने का एक्सटेंशन होता था
1: जी जी जी।
0: तो 15 महीने के बाद उन्होंने कहा कि अब हमको नहीं चाहिए। तो मैंने पार्टी दी लोगों को कि मैं फ्री हो गया, ये कुलदीप वगैरह सबको पार्टी दी कि अब मैं फ्री हूँ।
1: हाँ,
0: तो फिर मैं आके इप्टा में आके मैंने नाटक शुरू किए थे कि आजाद हो गया, मेरे को कोई ड्यूटी नहीं कुछ नहीं। तो अब जो मैं ये सब कर रहा था ऑलरेडी, तो मुझे वो 400 रुपए महीना मिलता था सच्चे वाले। तो जो भी यश जी ने तनख्वाह बोली, तो मैंने यश जी वहां क्लर्की के 400 रुपए मिला करते थे, यहाँ तो असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, तो जश जी जो देना आप दे दीजिए मैं ले लूँ। तो उन्होंने मेरी तनख्वाह 400 रुपए रखी
1: जी जी। वाह वाह।
0: तो 400 रुपए का ये फायदा था कि कोलीवाड़ा से पाली हिल तक 1 रुपया लगता था टैक्सी का।
1: अच्छा,
0: मैं टैक्सी में बैठ के आता था उनके घर में 1 रुपए में, तो 30 रुपए महीने का मेरा वो खर्चा था। बाद में उनकी गाड़ी होती थी, उनके साथ सराटकों में सुबह जाते थे उनकी गाड़ी में बैठ के, वापस उन्हीं के घर पाली हिल पे आते थे, फिर मुझे जाना होता साधना स्कूल में रिहर्सल के लिए ड्रामे की। वो अपनी गाड़ी बेचते थे, बेटा रामचंद्र को ले जाओ तेरे छोड़ कर जाएगा, वो मुझे वहां छोड़ देता सर, मैं आ जाता। तो इन चीजों में जो लिंक वाले बातें याद आती है, यादाश्त में हुआ ये कि कुछ बंबई बंद हो गई, हम वापस जब जाते थे ना तो ड्रामे की जो रिहर्सल कर रहे थे उसमें फारूक शेख, भरत कपूर,
1: हाँ,
0: रमन कुमार,
1: हाँ,
0: तो ये सब काम कर रहे थे। तो हम लोग बस की स्ट्राइक हो गई तो ट्रक में जाया करते थे, तभी एक जमाना था थोड़ी देर तक बीएसटी की स्ट्राइक हो गई थी
1: जी जी।
0: तो ट्रक वाला ट्रेन नहीं लेता था, आठा नहीं लेते थे। और भरत कपूर ने उन दोनों एक फिल्म में हीरो का रोल किया था, वो पिक्चर का नाम था गुप्त ज्ञान, वो सेक्स के बारे में कुछ, ये डॉक्टर थे। जैसे हम ट्रक में बैठते थे कुछ लोग ऐसे मजदूर टाइप के लोग पास आते थे, इनके डॉक्टर साहब हमने आपसे कुछ पूछना है। तो एक्चुअल देखिए, एक्चुअल डॉक्टर समझने लग गए और हम लोग सब जो है बैठे, तो हम दादर सब लोग उतरते थे वहां से पैदल खालसा कॉलेज तक, वहां भाजी पाव वगैरह खाते थे, फारूक शेख अपना चला जाता था बाइक वाला अपने घर मेन बिल्डिंग में, बस में बैठ के, और मैं कोलीवाड़ा पैदल वहां से टीम सर्कल से घर आए। तो ऐसा जिंदगी जो चल रही थी, नाटक हो रहे हैं साथ में, ये चोपड़ा का ये काम शुरू हो गया,
1: ये दाग फिल्म थी
0: और ये पहली सुइट दाग,
1: और आप दाग चीफ असिस्टेंट थे।
0: नहीं, पहले मैं चौथा असिस्टेंट था, तीसरा। तो वो क्या हुआ, जो चीफ असिस्टेंट साहब थे बड़े वाले जो नंबर वन थे, वो उनको इंटीरियर डेकोरेशन कास्ट्यूम की बहुत समझ थी, वो ज्यादा उस तरफ का करते थे।

0: तो काम जो है वो मुझे, क्योंकि नाटक वाला हूँ, डायलॉग देना, रिहर्सल करवाना,
1: चेंजेस करना
0: वो सब मुझे वो था, क्लर्की करना, मैं लिखता था कंटिन्यूटी, वो सब करना, तो सारा काम मैं करता था। अलबत्ता एक साहब गए, उसका जो दूसरे साहब थे वो यश जी के साथ बचपन से फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ते रहे, वो नाटक वाले नहीं थे, सिनेमा वाले नहीं थे। उधर बीए जब उन्होंने इनकी संग की थी, वहां नौकरी कर रहे थे, यश जी ने बुला लिया, अपना दोस्त है, बचपन से साथ में थे उनके।
1: हाँ हाँ,
0: तो वो यहाँ आ गए। अब कहा देखो वासुदेव धीर,
1: हाँ
0: भाई देखो पैसे का मामला है, मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता, ये तुम संभालो। तो उनको कैश, ये सब प्रोडक्शन, वो सब पैसे का मामला उन पे डाल दिया, वो बाकी चीजें कर कास्टूम वगैरह कर रहे थे और सेट का देखते थे और कलर स्कीम भी सोचते थे, और ये सारा काम आता था मुझे, टेक्निकल मेरे ऊपर आ गया। क्लैप भी देता था, कंटिन्यूटी भी लिखता था, डायलॉग भी देता था।
1: हाँ,
0: तो वो सारी चीजों से मेरी जो है ना
1: ट्रेनिंग होती,
0: ट्रेनिंग हो गई।

अब चाहे रब रूठे या दुनिया, मैंने तेरी बाह पकड़ ली, मैंने तुझे नियत कर ली।

0: स्टॉप करते करते पहले ही नहीं, और साथ में एक पिक्चर में ऑलरेडी राजेश खन्ना के साथ पहले वहां कर लिया था, और राजेश खन्ना के साथ काम करते हुए उधर ये था कि ऐसा कुछ हो गया था कि डब्बा जो फिल्म इंडस्ट्री में खाना आता था, खाना इन लोगों ने बंद कर दिया था, क्योंकि लोगों ने शिकायत लगाई किसी को चिकन नहीं मिला, किसी की टांग नहीं मिली मुर्गी की। उन्होंने कहा भाई मैं पैसे दूंगा अपने आप खाओ, ठीक है ये शिकायतें मत करो, नाटक मत करो मेरे। तो हम लोग कैंटीन में जाके खाना लगे, और गुरनाम सिंह जो था हमारा एक्टर था वो इनका सेक्रेटरी था राजेश खन्ना का, उसे आया उसने कहा काका नाराज हो रहा है रमेश तू क्या कर रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ। नहीं नहीं वो तेरे लिए खाना मंगाया उसने, डब्बा घर से आया हुआ मुझे माफ। तो वो जो हम साथ लंच में खाना खाते थे तो हमारी गपशप होती थी, फिल्मों की बातें होती थी, चीजों की बातें होती थी, और मैं जैसे ही थर्ड बेल बजे उससे पहले मैं दरवाजे पे जाके अंदर लेट ना हो जाऊं, और एक दिन मैं लेट होगा तो मुझे रवि चौपाल ने पकड़ लिया था कि देखो काका के साथ खाना खाते हो उसका मतलब ये नहीं कि तुम लेट आओ सारी आमदानी होगा। तो ये आप फिर पिक्चर दाग में राजेश खन्ना हीरो हो गई। हाँ और तू दाग जो चल रही है तो मेरी इम्पोर्टेंस बहुत थी, बिकॉज राजेश खन्ना बात करता है, डायलॉग करता है, रिसल करवा रहा है मेरे साथ, कई बार बहुत लंबी चीज है तो बोला रमेश लिख दो वहां पे सामने, रीडिंग करवा लो मुझसे और सामने लिख भी दो, अचानक में नजर मुझे पड़ेगी बहुत लंबे लंबे डायलॉग है, ये कोर्ट सीन में लंबे डायलॉग थे, तो मैंने लिख दिया वहां पे, उन्होंने कोर्ट सीन लिया अच्छा सा ग्लांस करके वो देख भी लिया। अगर आप मैं बोल चुका हूँ तो आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि राजेश खन्ना जी ये क्यों गया। तो ऐसा भी था, तो अलबत्ता खैर वो दोस्ती का जो है पूरा फायदा जो हुआ मुझे राजेश खन्ना की, अब मुझे जैसे ने कहा कि तुम पिक्चर डायरेक्ट करो मैं।
1: लेकिन दाग जब रिलीज हुई तो वो तो सुपर हिट हो गई,
0: सुपर
1: बहुत चली,
0: बहुत चली,
1: ये गाने बहुत चले,
0: बहुत चले।

0: और साथ में गुलशन राय जी ने जो फाइनेंस करते थे
1: जी,
0: उन्होंने अपनी पिक्चर यश जी को दी जो शीला बनाने के लिए,
1: सेकंड जो दाग के बाद,
0: दाग के बाद उसमें देवानंद साहब थे और देवानंद साहब, राखी, हेमा मालिनी जी और हम दार्जिलिंग में शूटिंग करने गए, प्राण साहब थे, प्राण एक्टर साहब, इन सबके साथ मेरी बड़ी तालमेल, क्योंकि मैं डायलॉग करवाता था तो हो गया, तो खैर उसमें जो भी एज स्टेज का आदमी कुछ बातें बोलता था तो मुझे जवाब ये मिलता था, कमर्शियल पिक्चरों में ऐसा होता है
1: जी जी,
0: तो मेरे कोई क्रिटिक वाली बात मैं बोलता था ना तो वो मुझे वो कर दिया जाता था, तो वो जब पिक्चर रिलीज हुई तो बोले पहले जब हम देखने जाते हैं शूट थोड़ी से अटेंड करते हैं, कुछ गड़बड़ है, कुछ काट डालें, कुछ अभी भी ऐड कर डालें,
1: ट्रायल शो
0: तो वही जगह जो मैं बोला करता था कि ये चीज ऐसी क्यों, ये क्यों, ये आदमी बंबई में पुलिस वाला दार्जिलिंग क्यों आएगा, ऐसा कुछ अजीब से बोलते थे पॉइंट मेरे, वो थिएटर के पॉइंट थे, मतलब नींद में निकालने वाले, जानबूझ के आप गलती निकालते ना, वो कहते हैं आटा घूमते हिलती क्यों हो, उस तरह के पॉइंट होते थे
1: जी जी,
0: तो वैसे ही पॉइंट मैं बोल दिया करता था, तो वो गुलशन राय जी ने, मैंने कहा था वो पॉइंट जो मैं आप लोगों से कहता भी था वो तो वही है, तो उतनी ज्यादा नहीं चलेगी पिक्चर, क्योंकि मैं पांच आने में पिक्चर में बहुत देखिए, ये जो आप अप्लॉज समझ रहे हैं उल्टी में हो रही है, ये क्यों होगा ऐसा, ये हंसने में ये ऐसा है, ये आपको हूट कर रहे हैं
1: जी जी,
0: तो इंटरप्रेट में जो हुटिंग होती थी
1: बिल्कुल
0: हमको पता था, तो अलबत्ता एनी वेज वहां देवानंद साहब के साथ मृत्यु हुई थी, देव साहब ने कहा यश तुम रमेश को पिक्चर दे रहे हो या मैं नवकेतन में दूं,
1: अरे बाप रे,
0: तो ये चीज का पूछे रमेश से, मैंने ऑलरेडी बोला सबने बोला हुआ था,
1: हाँ।
0: पहले मुझसे बोला हुआ था, तो मैंने बोल दिया कि भाई तुम अपनी अभी स्क्रिप्ट ढूंढो, तुम बोले ठीक है, वरना रमेश मैं बैठा हूँ, अलबत्ता अगली पिक्चर अब वो नहीं चली तो अब गुलशन राय की पिक्चर पहले बनानी थी हमने,
1: हाँ।
0: तो दीवार पिक्चर की पहले तो ये सोच रहे थे कि राजेश खन्ना के साथ अगली पिक्चर बनाए,
1: हाँ।
0: तो सलीम जावेद ने सब्जेक्ट सुनाया,
1: आप थे वहां पर जब
0: मैं था,
1: नरेशन
0: में था,
1: दीवार का पहला नरेशन हो रहा है,
0: पूरा पूरा नरेशन में था।

0: मैं थ्रू आउट जी। और मैं ऐसा थोड़ी देर में बोलता था, एक चीज हुई, उन्होंने हाथ पे लिखा मेरा बाप क्यों है, लिखा बच्चे के हाथ में। मैंने 15 हफ्ते श्योर ऐसा बोलता था मैं। तो सब जितने लोग थे मेरे साथ लोग करते थे कि चमचागिरी कर रहे हैं। फिर आगे कुछ गया, एक और हाईलाइट आई, मैं यहाँ बैठा हूँ वो फाइट वाले गोडाउन में बैठा हूँ,
1: तुम मुझे
0: कहा ढूंढ रहे हो, मैं यहाँ
1: बैठा हूँ,
0: समथिंग लाइक दैट। मेरे 25 हफ्ते फिर मुझे मेरे एडिटर साहब ने चुप कराया, रमेश प्लीज मेरे से ये सब मत बोलो, चुप रहो, पहले सुन लो एंड में डिस्कस करेंगे। ऐसा करते करते मैं 50 हफ्ते तक जा चुका था सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट सुनते सुनते
1: 50 हफ्ते फिल्म चलवा दी जी।
0: अब साहब कास्टिंग की बात आई, राजेश खन्ना की उस बेटी नहीं थी और इन्होंने कहा कि भाई ये अमिताभ बच्चन उन दोनों मिलने आया करते थे एक जगह पालील पे, और मुझे भी कहा करते थे, मेरे को शॉर्ट बुलाते थे तलवार का शॉर्ट बोलो यार, ये पिक्चर मेरे साथ करे, तो बड़ी बड़ी पिक्चर फिर इनकी पिक्चर हिट भी हो गई थी वो
1: रंजीर
0: थोड़ा तो मैं तो हीरो हिट होगा। तो ये जी ने ऐसा गुलशन राय से कहा, तो उन्होंने अपना हिसाब से कहा कि यार वो बड़ा हीरो है राजेश खन्ना, वेट ना कर ले समथिंग, कुछ छोटा मोटा सुनील जावेद भी साथ में थे
1: जी,
0: ने कहा लेकिन ये शूट ज्यादा करता है अमिताभ बच्चन, अगर आप रंजीर देखें उस हिसाब से ये ज्यादा शूट करेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा मान गए, और इनकी बेटी भी उनको खूब मिल गई अमिताभ बच्चन की, शशि कपूर जो थे
1: वो तो बड़े थे लेकिन
0: बड़े थे वही था, उनको छोटे भाई का रोल करना था, अब रोल उनका थोड़ा सा छोटा था इनके कंपैरिजन में, मेन हीरो ये थे। तो जो हम लोग फिल्म वाले जो थे थोड़ी सी कारिस्तानी करते हैं
1: जी,
0: एक दो आदमियों को भेजा गया जहाँ कहीं शशि कपूर शूटिंग कर रहा है, अरे साहब दीवार की स्क्रिप्ट सुनी, जैसे दीवार का आपका सब्जेक्ट था ना, तो उससे बेटर रोल है कभी कभी मैं आपका, दोनों पिक्चर में शोभा करना, एक खुद के लिए एक कुछ
1: कमीशन आएगी,
0: ऐसा कुछ लोग बोल देते
1: कन्विंस करने के लिए,
0: कोई बोल देता बीच डाल रहे कोई भी गया
1: जी जी जी,
0: जो अब सीनियर किस्म का आदमी है जो बोलने में ऐसा ना लगे कि
1: मैसे
0: बनावटी, तो वो साहब फिर शशि जी ने कहा यार तुम मुझे रोल सुनाते नहीं हो, तो उनको रोल सुनाया गया कि भाई देखिए लेंथ वही लो है पर छोट लो, मैं इनका बड़ा भाई लगू छोटा भाई लगूंगा, कहीं मैं ऐसा कर लेंगे बालों का ये कर लेंगे उसका ये कर लेंगे, जो ये जी ने कन्विंस किया वो मान गए, ये तुम्हारे पास बड़े अच्छे सीन है, इन लोगों ने भी सुनील जावेद ने कहा अगर आपको ट्रॉफी ना मिलेगी हम लाइन छोड़ लेंगे, बेस्ट एक्टर का अवार्ड ना मिला, तो उनको मिला रोल भी मिला उसमें,
2: ये भाई मैं हूँ और ये भाई तुम हो, हम दोनों एक साथ इस फुटपाथ से उठे थे लेकिन आज तुम कहाँ रह गए और मैं कहाँ गया, आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास, मेरे पास माँ है।
0: अमिताभ बच्चन का भी निकलाया तो पिक्चर हमारी सुपर डुपर हिट होगी साहब,
1: और आप इस फिल्म में असिस्टेंट थे,
0: असिस्टेंट नहीं इसमें चीफ असिस्टेंट हो गया था ना, अभी
1: आप चीफ असिस्टेंट
0: अब हो गया सब जगह, तो वो मैंने कहा ना पहली पिक्चर करते करते दाग में चीफ असिस्टेंट का टाइटल मिल गया था मुझे, जो सब काम मेरे ऊपर जब आ गए थे
1: तो सारी चीजें सब
0: सारे उसमें मेरा टाइटल है चीफ असिस्टेंट मिस्टर।
1: दीवार में गाने नहीं थे शुरुआत,
0: गाने शुरू में दो गाने थे, एक नौकरी मिलती है और एक नौकरी छूट जाती है, दो गाने थे उसमें शशि कपूर और बोलो बोलो दो ही गाने थे, कौन थी उसने उनकी हीरोइन
1: नीतू सिंह,
0: नीतू थी, बाद में उन्होंने पूनम के साथ भी काम किया तो उसने मेरी शशि कपूर बोलो, हमने ट्रायल किया इनके लिए, क्या होता था जब पिक्चर कंप्लीट हो जाती है तो राजकमल में ट्रायल होता था प्राइवेट सिर्फ री रिकॉर्डिंग के लिए, इनके लिए अपने
1: मंगेश
0: देसाई
1: प्री रिकॉर्डिस्ट बहुत बड़े
0: मतलब लोग उनके मानते थे, उनकी जजमेंट भी कमाल की थी
1: जी,
0: जो कहते थे उतनी पिक्चर उतनी चलती थी,
1: वाह वाह वाह,
0: और उस ट्रायल में किसी को बुलाया नहीं जाता था, अकेले होते थे और मेरे जैसा कोई एक असिस्टेंट और जैसी खुद बस, उन्होंने पिक्चर देखी तो जैसे हो तो हम निकले बाहर, जैसे बात तो करते होते चल रहे भाई पिक्चर तो बहुत अच्छी है आपकी लेकिन 15 हफ्ते से ऊपर नहीं चल सकती,
1: अरे बाप रे,
0: तो जजी ने कहा क्यों भाई, बोले म्यूजिक नहीं है हमारी फिल्म में, म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो मैंने कहा एज इट मुझे लगता है 50 हफ्ते चलेगी,
1: अपने नरेशन के समय
0: वही क्या, तो कहने लगे नहीं बेटा थ्योरी वाइज ठीक है लेकिन इस टाइम पे रिस्क नहीं लेना होता है।

अभी भी गाने डाल दो। तो हम लोगों ने तीन चार गाने रिकॉर्ड किए, तीन गाने और रिकॉर्ड किए। एक डॉक्स होता है जीवन वर्मा गेस्ट आर्टिस्ट बुलाइए, डॉक्स में गाना शूट किया, एक और गाना था और एक कवर।

0: एक जो इनका था देवेंद्र वर्मा वाला, वो लगता है जबरदस्ती घुसाया हुआ है, हम लोगों ने वो काट दिए,
1: कवाली भी काट,
0: लेकिन कवाली हमको पसंद आई थी
1: जी।
0: तो सलीम जावेद को पिक्चर दिखाई, उन्होंने कहा साहब ये कवाली तो इसमें नहीं रह सकती, वो निकाल दीजिए। तो जी ने कहा भाई वैसा है मंगी जी, नहीं नहीं हम दीजिए हम तो ये। अब साहब उस वक्त क्या था, जैसे बड़े भले आदमी थे, गुलशन राय भी बड़े भले आदमी थे, ये ज्यादा उस वक्त बोलते नहीं थे, लेकिन सलीम जावेद सुपर हिट थे उस वक्त
1: जी,
0: और ये बोलते थे, उनका अपनी बात करवाते थे और करवाते थे
1: और मनवाते थे,
0: मनवाते थे। तो अब उनके सामने सिर्फ मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा देखिए जावेद साहब, सलीम साहब, मैंने उस टाइम भी आपसे कहा था ये पिक्चर इतनी चलेगी, 15 हफ्ते, 25 हफ्ते, 50 हफ्ते कहा था, बोले लेकिन चली तो 104 हफ्ते ना।
1: क्या बात है।
0: हाँ। तो मैंने कहा चलिए वो सही।
1: हाँ।
0: तो आप, मैं भी ये चाहता हूँ कि ये पिक्चर भी 50 हफ्ते जरूर चले।
1: हाँ।
0: तो आप प्लीज, तो कहने लगे ठीक है हम आपके अगली पिक्चर नहीं करेंगे, गुलशन राय से भी दे दिया और यश चोपड़ा से रखा,
1: सिर्फ इस कबाली की वजह से।
0: हाँ, हम फिर अगली, अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे हम नहीं करेंगे। तो मैंने कहा मत कीजिए, आपको भी बहुत प्रोड्यूसर मिलेंगे, हमको भी बहुत राइटर मिलेंगे।
1: अरे बाप रे।
0: अब ये बात जैसी भी चुप है, गुलशन जी भी चुप है, और मैंने कह दिया ये बात। और देखिए साहब, जैसे हम बाहर निकल रहे हैं साथ में, तो जावेद साहब कहने लगे, रमेश जी बुलाते, रमेश जी आप कैसे इतना के एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, आपने तो हमारे पांव पे कुल्हाड़ी मार दी।
1: ओ,
0: कवाली के बदले कवाली मार दी, कुल्हाड़ी मार दी के बदले बोला आपने तो हमारे पांव पे कवाली मार दी।
1: अरे गजब, क्या डायलॉग,
0: ये डायलॉग बोला
1: जी।
0: मेरे कहा साहब मजबूरी है, और फिर बाद में उन्होंने देखा, बाद में माने भी, और अगली पिक्चर उन्होंने हमारे साथ की भी,
1: लेकिन कवाली तो हटा दी थी ना।
0: नहीं हटाई थी
1: जी,
0: ये कवाली नहीं हटाई
1: जी,
0: वो बाकी दो गाने काटे देवेंद्र वर्मा के, शुरू में रिलीज से पहले काट दी, कवाली रही। तो वो इस बात पे माने, वो मतलब अंदर से हमारी आपस में म्यूचुअल रिस्पेक्ट शुरू हो चुकी थी। अब जब इन्होंने मेरी, मैंने फिल्म कर रहा था तो जमाना के लिए उन्होंने सोचा, जमाना फिल्म के लिए, कि भाई ये फिल्म जो है, ये पिक्चर पहले शायद बना रहे थे मोहन कुमार,
1: हाँ हाँ,
0: प्रेम जी के लिए, और उसमें अमिताभ बच्चन थे और शशि कपूर भी शायद, या कोई और थे, अमिताभ बच्चन शशि कपूर भी शायद थे, और प्रेम जी पूरे अनाउंस हुई स्क्रीन में उसके फुल पेज दिया था, और नाम कुछ और रखा था
1: जी,
0: ए से नाम रखा था, मोहन कुमार की पिक्चरों का नाम ए से होता था। बाद में कुछ आपस में जो भी होगा, नहीं बनी पिक्चर, इनके पास स्क्रिप्ट थी,
1: और आप तो ऑलरेडी डायरेक्टर बन चुके।
0: मैं बन चुका था,
1: तब तक तो बसेरा
0: आ गई थी। हाँ। बसेरा आ गई थी। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप आइए हमसे मिलिए, गया मिलने,
1: जावेद साहब ने,
0: जावेद साहब और सुनील साहब दोनों बैठे थे, तो मैं गया, बोलने लगे भाई एक प्रोजेक्ट है करेंगे आप, बोले जी आप कमाल कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूंगा, देखिए कमर्शियल सब्जेक्ट है आप खुल लीजिए।
1: हाँ।
0: फिर बोलिए, और हम आपको कास्टिंग नहीं बताते हैं, आपका दोस्त ऋषि कपूर उसमें होगा, जो ऋषि कपूर के साथ उन्होंने बहुत फिल्में कर रहा था।
1: हाँ बिल्कुल,
0: ऋषि कपूर उसमें होगा और साथ में होंगे राजेश खन्ना,
1: वो भी आपके दोस्त।
0: अब उसी टाइम पे एक्चुअली डिंपल की शादी राजेश खन्ना के साथ हो गई थी
1: जी जी,
0: और कंट्रोवर्सी चल रही थी कि वो हीरोइन थी बॉबी में।
1: हाँ।
0: तो पिक्चर को बिल्डअप मिलता है, ये उनके जहन में था, और रमेश तलवार के दोनों हीरो दोस्त थे। तो साहब वो फिल्म मैंने कहानी सुनी, मेरा बसेरा करने के बाद, दूसरा आदमी करने के बाद दिमाग जो है खराब हो चुका था, खराब मतलब सीरियस हो गया था। ये पिक्चर बिल्कुल कमर्शियल पिक्चर थी, यार वही स्मगलिंग, वही पुलिस और सिपाही, और तो देखिए मुझे, मेरे लायक नहीं है, कोई और करे तो बेटर।

0: आपके लिए।
1: हाँ हाँ
0: भाई, जब आप फिल्म करेंगे और सलीम जावेद की स्क्रिप्ट होगी तो आप सोचिए, डायलॉग नहीं लिखे होते, स्क्रीन प्ले तैयार तो
1: जी जी,
0: अब तो डायलॉग लिखने हैं, डायलॉग लिखे होंगे तो फिर आप सोचिए।
1: जी जी जी,
0: तो साहब मैंने कहा फीस क्या लेंगे? कहने लगे भाई फीस तो कोई डायरेक्टर हमसे हमारे पास है ऑलरेडी जो 2 लाख 2.5 लाख रुपए ले रहे हैं, तो आपको भी वही दे देंगे। तो मैंने कहा आपने हमसे अभी कितने पैसे मांगे थे पिक्चर के? बोले 21 लाख। तो मैंने कहा 21 लाख 10.5 लाख सलीम साहब के,

0: ढाई लाख रुपए ले रहे तो आपको भी वही दे देंगे। तो मैंने कहा आपने हमसे अभी कितने पैसे मांगे थे पिक्चर के? बोले 21 लाख। तो मैंने कहा 21 लाख, 10.5 लाख सलीम साहब के, 10.5 जावेद साहब के, और डायरेक्टर जो 2.5 लाख देंगे तो पिक्चर अच्छी कैसे बनेगी?
1: क्या गजब बात है। फिर
0: तो साहब आप सोचिए। बोले नहीं, हमको 21 अभी मिले नहीं है, हम 21 मांग रहे हैं, अभी तक 14 मिले हैं। अच्छा 7 लाख दे दीजिएगा। उसमें पार्टनर भी थे तो,
1: अच्छा,
0: क्योंकि जो फाइनेंसर था वो इनके पास आया था।
1: हाँ।
0: क्या आप कोई प्रोड्यूसर खड़ा कर दीजिए, आप खुद प्रोड्यूस भाई? तो उन्होंने बाद में खुद प्रोड्यूस भाई नहीं करना चाहा, किसी और जगदीश शर्मा जी को पिक्चर दे दी। लेकिन छत्र छाया इनकी कंपनी ऐसा कहना चाहता इनकी पिक्चर। तो मैंने कहा भाई मैं, मुझे साथ ही दे दीजिए, मैं जाता हूँ। तो बोले आपने कहीं जाना था क्या? कहा आपने मिलकर नाटक की रिहर्सल है, जाइए ना रिहर्सल भी जाइए ना, फिर क्यों बैठे हैं? थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन करके कुछ ऐसा डायलॉग मार के, वन लाइनर मार के मैं भी चला गया। तो अलबत्ता उन्होंने, मैं सागर सर्दी का फ्लैट था जुहू पे
1: जी,
0: टेरेस फ्लैट था, वहां कुछ रीडिंग वीडिंग थी वगैरह, सब लोग आए हुए थे। जावेद साहब को साइकिल में वहां जाना, और जावेद साहब वहां पे आए
1: पीछे से।
0: हाँ, थोड़ी देर के बाद जब मेरे हो गया काफी बाद, उन्होंने आपस में डिस्कस कर लिया होगा
1: जी,
0: तो ये पिक्चर के लिए बेटर तो यही है अगर ये करे तो। मेरे बहुत ज्यादा इच्छा भी नहीं थी, सच बात यह है।
1: हाँ।
0: प्राइस इसलिए बोला था कि मेरी ज्यादा इच्छा नहीं थी।
1: करेक्ट है।
0: और मैंने बाकी पिक्चर जो की थी वो परसेंटेज पे की थी कि पार्टनर बना लो। अपना बसेरा में भी 1/3 पार्टनर था मैं, और यजी में मुझे सवाल में 1/3 पार्टनर बना लिया था
1: जी,
0: और ऐसा ऐसा इस तरह का काम, और जो आएगा खा लेंगे आपस में ऐसा। तो आए और उन्होंने कहा भाई प्राइज लेना तो कोई आपसे सीखे। मुझे समझ गया, अब मैं थोड़ा सा उदास था, वो मान गए, और थोड़ा सा ये था कि मेरे टाइप की पिक्चर नहीं है।
1: हाँ।
0: अब मुझे पूरा दिल लगा के पिक्चर बनानी है
1: जी,
0: ये पिक्चर अच्छी बने, और वो हमने मेहनत करके पिक्चर अच्छी बनानी शुरू की। 12 रेल में पिक्चर बंद हो गई।
1: अरे बाप रे।
0: क्योंकि वो जो फाइनेंसर था उसने कहा मैंने जयपुर में होटल खरीद लिया है और मेरे पास अभी पैसे नहीं है,
1: ये लो।
0: और मेरे पास राजेश खन्ना के भी डेटे हैं, ऋषि कपूर भी डेटे
1: हैं,
0: हीरोइनों के भी डेटे हैं, और ठहर गया। अब साहब 2-3 साल और वेट करना पड़ा। अब अचानक 2-3 साल के बाद वो आए कि भाई मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। अब लोगों के कपड़ों की स्टाइल बदली हो गई थी।
2: रंगमंच और फिल्मों के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत आपने सुनी। ये बातचीत अभी अधूरी है, बातचीत जारी रखेंगे अगले हफ्ते उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में। चलते चलते आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं जुबैर खान। उजाले।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कड़ी सुरक्षा के बीच 77 केंद्रों पर की जाएगी।
1: 294 सीटों में से पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती कल होगी। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के 3 स्तरीय इंतजाम किए गए हैं, जिसमें जिला पुलिस, राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। मतगणना स्थलों पर केंद्रीय बलों की कुल 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। ये पूरी प्रक्रिया रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के नियंत्रण में होगी। ये पहली बार है जब मतगणना प्रक्रिया के लिए वरिष्ठ IPS अधिकारियों को पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। मतगणना प्रक्रिया का प्रबंधन एक टीम करेगी। इसमें सुपरवाइजर, मतगणना सहायक और माइक्रो पर्यवेक्षक शामिल होंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण।
0: केरलम में 140 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना स्थलों पर

0: सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना के लिए सुरक्षा तथा निगरानी के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुदुचेरी के मुख्य चुनाव अधिकारी पी जवाहर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि पुदुचेरी की सभी 30 विधानसभा सीटों की मतगणना कराईकल, यानम और माहे में होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के लिए 35 जिलों के 40 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती की जाएगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर से मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद यह निर्णय लिया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी आई को दृष्टि मिशन के सफल प्रक्षेपण पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि ये मिशन भारत के निजी अंतरिक्ष नवाचार और आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती हुई ताकत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह और भारत में निर्मित सबसे बड़े निजी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण युवाओं के नवाचार और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनके जुनून का प्रमाण है। उन्होंने गैलेक्सी आई के संस्थापकों और पूरी टीम को बधाई दी है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सवेरे 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के शाहदरा स्थित विवेक विहार इलाके में हुए अग्निकांड में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2,00,000 रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है, जबकि घायलों को 50,000 रूपये दिए जायेंगे। सरकार ने बच्चों में मधुमेह पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश हाल ही में संपन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण से संबंधित एक राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में जारी किए गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि ये दिशा निर्देश पहली बार बचपन में मधुमेह की जांच, निदान, उपचार और दीर्घकालिक प्रबंधन के लिए एक मानकीकृत राष्ट्रीय ढांचा उपलब्ध कराता है। ईरान ने शांति वार्ता में गतिरोध को समाप्त करने के प्रयास में आज अमरीका को एक नया प्रस्ताव भेजा। हालांकि अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के इस नए प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि अमरीका द्वारा किसी भी ऐसे ढांचे को स्वीकार करने की संभावना नहीं है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने की ठोस गारंटी शामिल न हो। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 166 रन का लक्ष्य दिया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी रे संभाषण ले दिल्ली को प्रचार कलु आकाशवाणी दिल्ली रो कार्यक्रम सुनते आकाशवाणी जयपुर केन्द्र रो प्रचारित होची मीडियम वेब रे 204.5 मीटर तथा 1467 किलोहर्ट्ज जुगे एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज जुगे एवं मोबाइल फोन रो न्यूज ऑन एआई रैप माध्यम रे सुनंतु गोटी घोषणा भारत रो जनसाधारण सरल एवं सुविधा रे न्याय पाई पानी मन्ते भारत रो सर्वोच्च न्यायालय एक अभियान आरंभ करिछंती जहा कि समाधान समारोह 2026 नाम रे नामित होईछि। ଏହି ଅଭିଯାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ଅଦାଲତ 2026 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସର 21, 22 ଏବଂ 23 ତାରିଖରେ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ଅଦାଲତରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ସହମତିରେ ଏବଂ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କଠାରେ ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ପରିସମାପ୍ତି କରାଯିବ। ଏହି ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ଅଦାଲତ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଠାରେ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବ।

0: ভিতরা
1: आपण जणे व्यवसायी की आउ आपणक व्यवसाय को बढेबा को चाहौचंती की
2: तेबे चिंता करंत नाही तेनी की आकाशवाणी जयपुर आपणक व्यवसाय को बढेबार दायित्व नबो
1: रेडियो रे विज्ञापन दियंतु आउ आपणक व्यवसाय को बढांतु
2: सुलभ दर रे आपणक व्यवसाय रो विज्ञापन पहुंची जिवो सबुठी सब समय रे आउ समस्तक पाखरे
1: विज्ञापन पई जोगाजोग करंतु 8280306927 किंबा 9449408097 नंबर रे
2: आकाशवाणी जयपुर सदा आपनक साथ रे सब समय रे आपनक सेवा रे
3: परवर्ती गीत सुनंतु कथा चित्र धर्म सहिले हेला शिल्पी एनहले रूप कुमार राठौर एवं अनुराधा पौडवाल।

0: हेलो भाई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर संपर्क क्षेत्र उपस्थापक उपस्थापिका मोर हार्दिक शुभेच्छा शुभकामना। मुडिलांचल भू कौच ग्राम तलगा जिला बलांगीर। गत गुरुवार दिन सजमज कार्यक्रम सुनती आपको रिक्वेस्ट करी स्वामी और स्त्री को कम परिवार कार्यक्रम प्रचार प्रसार करने जहां भी हो मो कथा रक्षा करके रंजन सार स्वामी और स्त्री को कम परिवार कार्यक्रम प्रचार प्रसार करते हैं विभिन्न हस कथ को लेकर कार्यक्रम प्रचार प्रसार करते हैं। हृदय सहित धन्यवाद दे गत गुरुवार दिन सजमज कार्यक्रम एमती खुशी लगी व्यंग कविता प्रेम खुब शिक्षण होता बड़ भाई उदय शंकर जानी सुंदर भाव कार्यक्रम प्रचार प्रसार करते हृदय सहित धन्यवाद दूसरी कार्यक्रम मध्यम जिते सुंदर भाव कार्यक्रम प्रचार प्रसार कर दल आकाशवाणी कार्यक्रम शुणी बहुत खुशी लगी जहां उपस्थापन दायित्व रंजन सार विभिन्न प्रश्न उत्तर गुड़िक श्रोता मान तथ्य गुड़िक कार्यक्रम प्रचार प्रसार कर हृदय सहित धन्यवाद दे एते सुंदर भाव कार्यक्रम प्रचार प्रसार करो विशेष कार्यक्रम कथा आपण गीत लाइफ कार्यक्रम शुणी आकाशवाणी जयपुर केन्द्र गत सोमवार दिन बहुत खुशी लगी जहां सुंदर भाव टॉपिक गुड़ को आणकि गोटे मस थर कार्यक्रम प्रचार प्रसार कर रंजन सार से हृदय सहित धन्यवाद दूसरी कार्यक्रम मध्यम जिते सुंदर भाव श्रोता बंधु साथ कथबार्ता जो कार्यक्रम संपर्क मोर कत मतामत अच्छे कारण जिते भी आम आपको मतामत दूचु सफलतार चबिकाठी आमको मिले जाऊँ प्रथम मतामत हूँ कि आपण मजे अतीत काल में प्रेम नुहे खेड़घर ए नाटक टी प्रचार प्रसार करते जोगबाणी विभाग में जहां निजे प्रयोजना दायित्व निजे रचना करते रंजन सार से कार्यक्रम पार्टा जी कार्यक्रम प्रचार प्रसार करेंगे ताकि शुणा को खुशी लगे संपर्क हिसाब निका ए सुंदर नाटक तार पार्टा जी आपगवाणी कार्यक्रम आरंभ करेंगे तार निहती भाव शुणी खुशी लगे कारण से दुईट नाटक एमती प्रिय कह टुंडे शब्द नाई द्वितीय मतामत होते आपने कार्यक्रम प्रचार प्रसार कर आकाशवाणी जयपुर केन्द्र बहुत खुशी लगुच जानवाक चाहूँ गत मस विशेष कार्यक्रम किसान मानी फोन प्रश्न मंच जो आप्यक्रम प्रचार प्रसार करते से कार्यक्रम टी आप बंद कर देखिए यार कारण टी जन आम निहती खुशी हम कारण अनेक विशेषज्ञ महाशय सार मन को आनिक्रम प्रचार प्रसार करते बहुत खुशी लगुला कारण यहाँ तो एक मस हम से कार्यक्रम शुणी ना से दुख लगुच से कार्यक्रम टी जी आप प्रचार प्रसार करते कौन से कार्यक्रम टी आपचार कर यार कारण टी जन मुति भाव खुशी हे अनेक श्रोता भाई भाई मैंने शुणुन से शुणिक खुश हे यार उत्तर टी देवे आशा विश्वास कर मोटामोटी कह कप्तार समस्त कार्यक्रम टी निरा
0: से भयस मेसेज सजमज कार्यक्रम भल लगी विशेषकर से जहां अनुरोध करते स्वामी स्त्री भितर कथबार्ता बेसी गला थर सजमज कार्यक्रम कम करते आमे तांको अनुरोध को रक्षा कर सजमौज टिके परिवर्तन कर देथिलु एवं स्वामी स्त्री कथबार्ता अल्प प्रचार करथिलु तापरे से भॉइस मेसेज रे कहिछंती जे डायल आकाशवाणी तांको भल लागिछे विशेषकर श्रोता सहित रंजन भाई आलाप आलोचना मन को छुईछि तापरे लाइव फोन इन कार्यक्रम कथा आपणकर गीतामर तांको भी भल लागिछि अनेक दिन परे रंजन भाई से कार्यक्रम उपस्थापना करथिले तेणु शुणवाक भल लगी से कहते मतामत अनुरोध करुवाणी प्रेम नुहे खेलघर यार द्वितीय भाग प्रचार करने संपर्क हिसाब निकाश नाटक भी जुवाणी प्रचार होता तहार भी द्वितीय भाग प्रचार करने से अनुरोध कर नीलाचल भाई आपण दुईट अनुरोध आम मन रहा आम भविष्य चेष्टा कर दुईट नाटक द्वितीय भाग प्रचार करने कहिछंती जे किसान बाणी रे फोन इन प्रश्न मंच कार्यक्रम काहेकि प्रचार करा जाउ नाही देखंतु नीलाचल भाई आम प्रति मासर द्वितीय एवं चतुर्थ मंगलवार राति 7:30 रे प्रचार करूछु किसान बाणी फोन इन प्रश्न मंच सुजल बा सुफलार सीधा प्रसारण आपण जदि नियमित कार्यक्रम शुणुछंती निश्चय जानिपरिबे जदिओ आपण लेखिछंती जे प्रचार हेनथिला बोली आपणकर अनुरोध मन रहा आम परवर्त समय चेष्टा कर किसानवाणी फोन इन प्रश्न मंच रपणकर प्रति मतामत अभियोग को आम साधर ग्रहण करपणक भी धन्यवाद दूसरे आप सुंदर कार्यक्रम शुणुंट बलिष्ठ मतामत दौरान तेज स्मिता यह भयस मेसेज केवल गोटे मात्र भयस मेसेज आर्तमान आम देखा मेसेज
2: आमको मेसेज पठे चिंतामणि प्रधान से एक सुंदर कविता लिखी संभावना हृदय छुईला उपस्थापनार स्वर रंजन भाईर सुरभि अपांक प्रीति फगुणर धार गाँ कनिया को सिंघाणी नाकिल निज पाखे नाही मूल पर देशे को तो आदर नियंती कहते ताहाको भल संभावना तमे नंदन बनर सज परिजात फूल सत कहुची मो मथा छुई तम पाउछी

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी, सुचारू मतगणना के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का सफल परीक्षण किया। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस प्रक्षेपण की उपलब्धि पर सराहना की है। पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान अस्थायी रुकावट के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के कई गंतव्यों के लिए सामान्य उड़ानों का संचालन फिर से शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। दूसरे मैच में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सवेरे 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी, उसके बाद ईवीएम के माध्यम से कई चरणों में मतगणना होगी। सभी केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और केंद्रीय बलों, राज्य पुलिस कर्मियों और चुनाव अधिकारियों को तैनात किया गया है ताकि मतगणना प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके। रिकॉर्ड तोड़ मतदाता भागीदारी के बाद अब सबकी निगाहें कल के नतीजे पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि अगले 5 वर्षों तक पश्चिम बंगाल पर किसका शासन रहेगा। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
0: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर से

0: मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद यह निर्णय लिया गया। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्ना द्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस बार के चुनाव में राज्य के सियासी मैदान में कई नए चेहरे नजर आए हैं। इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि नई पीढ़ी ने राज्य की चुनावी राजनीति में गंभीरता से दिलचस्पी दिखाई है। वॉल राइटिंग, चित्रकारी, दीवारों पर पोस्टर लगाने की संस्कृति पर प्रतिबंध लगने के बाद राजनीतिक दलों ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भरपूर इस्तेमाल किया है। मतदान के दिन युवाओं की भागीदारी भी जबरदस्त रही और हर युवा वोटर की सोशल मीडिया प्रोफाइल और पर्सनल अकाउंट पर उंगली पर नीली स्याही वाली सेल्फी भी अपडेट होती रही। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 14,59,039 मतदाता पहली बार के वोटर रहे। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: केरल में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: केरलम के 140 विधानसभा सीटों के लिए कल होने वाली मतगणना में 43 जगहों पर 32,000 से अधिक पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है। जिला चुनाव अधिकारियों को आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त पाबंदियां लगाने का निर्देश भी दिया गया है। मतगणना की मेजों पर अधिकारियों की तैनाती और रैंडमाइजेशन का तीसरा दौर कल सुबह 5 बजे होगा। मतगणना शुरू होने में अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं। ऐसे में सीपीएम के नेतृत्व वाले एलडीएफ, कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने इस बार बेहतर प्रदर्शन का पूरा भरोसा जताया है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं करिश्मा राय।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुदुचेरी में आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
3: पुदुचेरी में राजनीतिक पार्टियां और आम जनता विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मतगणना कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। 9:30 बजे से शुरुआती रुझानों के सामने आने की उम्मीद है। ईवीएम और वीवीपैट की गिनती के लिए कुल 166 टेबल लगाए गए हैं। साथ ही डाक मतपत्र के लिए 35 टेबल लगाए गए हैं। मतगणना के लिए कुल 859 अधिकारियों को तैनात किया गया है। मतगणना में 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें सिविल पुलिस, सशस्त्र पुलिस और केंद्रीय बल शामिल है। पुदुचेरी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी जवाहर ने सभी संबंधित पक्षों से गिनती की प्रक्रिया को सुचारू, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने में पूरा सहयोग देने की अपील की है। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: उधर असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी।
4: असम में मतगणना की प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए व्यापक और बहुस्तरीय सुरक्षा प्रबंध किया गया है। मतगणना राज्य के 35 जिलों में स्थापित 40 केंद्रों में होगी। अधिकांश जिलों में जिला मुख्यालय पर एक एक केंद्र बनाया गया है, जबकि कोकराझार, तिनसुकिया और जोरहाट में 2-2 केंद्र तथा नौगांव में 3 केंद्र स्थापित किए गए हैं। पूरी प्रक्रिया की निगरानी 126 काउंटिंग ऑब्जर्वर्स द्वारा की जाएगी। उनके सहयोग के लिए लगभग 6,000 काउंटिंग कर्मी और 2,300 से अधिक माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं। असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग गोयल ने 2026 के विधानसभा चुनाव को ऐतिहासिक बताया है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
5: जनादेश 2026।
6: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
5: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
6: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
5: जनादेश 2026।
0: भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि मिशन दृष्टि अपनी उन्नत, हर मौसम में 2400 घंटे पृथ्वी को अवलोकन करने की क्षमता के साथ भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत में निर्मित सबसे बड़े निजी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण युवाओं के नवाचार और राष्ट्र निर्माण में उनके जुनून का प्रमाण है।

0: अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के बारे में हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: आईआईटी मद्रास से शिक्षा प्राप्त करने के बाद 5 विद्यार्थियों द्वारा स्थापित गैलेक्स आई ने आज मिशन दृष्टि के द्वारा विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। सुयश सिंह, डेनिस चावड़ा, किशन ठक्कर और अन्य युवाओं द्वारा बेंगलुरु में 2021 में आरंभ किए गए इस स्टार्टअप ने आज भारत की क्षमता का परिचय दिया है। उनके द्वारा तैयार किए गए सैटेलाइट विश्व का एकमात्र ऐसा यान है जिसमें सिंथेटिक अपर्चर रेडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजरी सेंसर का मिला जुला उपकरण डाला गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सवेरे 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने इस अग्निकांड में हुई जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा भी की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच सरकार ने कहा है कि वो ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और भारतीय नागरिकों को सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने 2 मई से देश के हवाई क्षेत्र में सामान्य हवाई यातायात को पूरी तरह से बहाल कर दिया है और क्षेत्रीय तनाव के कारण लगाए गए सभी अस्थायी सुरक्षा प्रतिबंध हटा दिए हैं। भारतीय और संयुक्त अरब अमीरात की विमान कंपनियां संयुक्त अरब अमीरात से भारत के विभिन्न गंतव्यों के लिए उड़ानों का संचालन कर रही हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अब तक सड़क मार्ग के माध्यम से ईरान से 2500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सहायता की है। ईरान ने शांति वार्ता में गतिरोध को समाप्त करने के प्रयास में आज अमरीका को नया प्रस्ताव भेजा। हालांकि अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो पश्चिम एशिया संघर्ष को खत्म करने के लिए ईरान के इस नए प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि अमरीका द्वारा किसी भी ऐसे ढांचे को स्वीकार करने की संभावना नहीं है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने की ठोस गारंटी शामिल न हो। ईरान ने संकेत दिया है कि यदि अमरीका अपनी सैन्य उपस्थिति को कम करता है और ईरानी तेल निर्यात पर प्रतिबंध समेत आर्थिक दबाव में ढील देता है तो वह हॉर्मुज जल्द हमरू मध्य के आसपास तनाव को कम करने के लिए तैयार है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और विदर्भ में आंधी और ओलावृष्टि का भी अनुमान व्यक्त किया गया है। विभाग ने असम, मेघालय, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल गरज के साथ तेज बारिश की आशंका जताई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार पुणे जिले के नासरापुर में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। आकाशवाणी समाचार के व्हाट्सएप चैनल ने 1,00,000 फॉलोअर्स का आंकड़ा हासिल कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस व्हाट्सएप चैनल के जरिए प्रतिदिन समाचार अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज और अलर्ट्स उपलब्ध कराए जाते हैं।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उन खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें यह कहा गया था कि आधार कार्ड का स्वरूप इस साल के अंत तक बदलकर सिर्फ एक फोटो और एक QR कोड वाला हो जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से कल से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देशभर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व

0: संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से कल से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देशभर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। हैदराबाद के 166 रन के लक्ष्य को कोलकाता ने 19वें ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। कोलकाता के वरुण चक्रवर्ती को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दिन के दूसरे मुकाबले में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब ने 17 ओवर में 6 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। सरकार ने बच्चों में मधुमेह पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश हाल ही में संपन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण से संबंधित एक राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में जारी किए गए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी। सुचारू मतगणना के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि की सराहना की है। पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान अस्थायी रुकावट के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के कई गंतव्यों के लिए सामान्य उड़ानों का संचालन फिर से शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. All set for counting of votes tomorrow for West Bengal, Assam, Keralam, Tamil Nadu and Puducherry assembly elections. Robust security arrangements in place for smooth counting. Indian space startup Galaxy launches Mission Drishti, world's first Optosar satellite aboard SpaceX's Falcon 9 rocket. Vice President and Prime Minister hail the feat. UAE resumes normal flight operations to the multiple destinations in India after brief suspension amid West Asia conflict. IMD issues orange alert for heavy rainfall along with thunderstorms and gusty winds over several parts of North India tomorrow. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders beat host Sunrisers Hyderabad by 7 wickets. Gujarat Titans facing Punjab Kings at Ahmedabad in another fixture. And now the news in detail. All preparations are in place for counting of votes for the assembly elections in 4 states, West Bengal, Keralam, Tamil Nadu, Assam and the Union Territory of Puducherry to be held tomorrow. The counting will begin at 8 in the morning. Counting of postal ballots will be taken up first and counting of electronic voting machines will start at 8:30 a.m. Early trends are expected to emerge by noon. Election Commission has put in place robust security arrangements for smooth counting in 4 states and 1 Union Territory. Voting for all 126 seats in Assam, 140 in Keralam and 30 seats in Puducherry was held on the 9th of April. Polling for all 234 assembly constituencies in Tamil Nadu and for the first phase in West Bengal covering 152 seats was held on the 23rd of April. Voting for the second phase in West Bengal took place on the 29th of last month for 142 constituencies. In West Bengal, counting will take place across 77 centres. We have more from our correspondent.
2: After an intense campaign and record voter participation, all eyes are now on tomorrow's verdict, which will decide who governs West Bengal for the next 5 years. According to the Election Commission, postal ballots will be counted first, followed by electronic voting machines in multiple rounds. Results for 293 constituencies are expected through the day, while the remaining Falta constituency will go for the fresh polling later this month. Central forces, state police personnel and election officials deployed to ensure a smooth and transparent counting process. CCTV surveillance and multi-layer security arrangements have been put in place at strong rooms and counting halls. Early trends are expected within the first few hours of counting, while the final picture

0: ରାଗ ସମୁଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶୁଣିଲେ ଉସ୍ତାଦ ବଡ଼େ ଗୁଲାମ ଅଲ୍ଲୀ ଖାଁଙ୍କ ଖେୟାଲ ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର ସମୟ ରାତି 11:00 ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୀରେ ଏବଂ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ
1: ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମେ ବୈଷ୍ଣବୀ पश्चिम बंगाल असम तमिलनाडु केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी, उसके बाद ईवीएम के माध्यम से कई चरणों में मतगणना होगी। सभी केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और केंद्रीय बलों, राज्य पुलिस कर्मियों और चुनाव अधिकारियों को तैनात किया गया है ताकि मतगणना प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके। रिकॉर्ड तोड़ मतदाता भागीदारी के बाद अब सबकी निगाहें कल के नतीजे पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि अगले 5 वर्षों तक पश्चिम बंगाल पर किसका शासन रहेगा। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
1: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद यह निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन अन्ना द्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस बार के चुनाव में राज्य

केरल में भी मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। उधर असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी। पुदुचेरी में भी आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेस एक्स आई के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से कल से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देशभर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पश्चिम

बदलती स्थिति के बीच सरकार ने कहा है कि वे ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और भारतीय नागरिकों को सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने 2 मई से देश के हवाई क्षेत्र में सामान्य हवाई यातायात को पूरी तरह से बहाल कर दिया है और क्षेत्रीय तनाव के कारण लगाए गए सभी अस्थायी सुरक्षा प्रतिबंध हटा दिए हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अब तक सड़क मार्ग के माध्यम से ईरान से 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सहायता की है। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। दिन के दूसरे मुकाबले में अहमदाबाद में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 164 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17 ओवर में 5 विकेट पर 140 रन बनाए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।